कह दो कि मौत जिससे तुम भागते हो वो तो तुम्हारे सामने आकर रहेगी, फिर तुम पोशीदा और जाहिर के जानने वाले मालिक की तरफ लौटाए जाओगे, फिर जो कुछ तुम करते रहे हो वो सब तुम्हें बताएगा। मोमिनों, जब जुमे के दिन नमाज के लिए अजान दी जाए तो अल्लाह के जिक्र की तरफ लपको और खरीदो फरोख्त तर्क कर दो, अगर समझो तो ये तुम्हारे हक में बेहतर है। फिर जब नमाज हो चुके तो जमीन में फैल जाओ और अल्लाह का फजल तलाश करो और अल्लाह को बहुत बहुत याद करते रहो ताकि कामयाब हो जाओ। और जब उन लोगों ने सौदा बिकता या तमाशा होता देखा तो उधर भाग लिए। और ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हें खुतबे में खड़ा छोड़ गए। कह दो कि जो चीज अल्लाह के हां है वो तमाशे और सौदे से कहीं बेहतर है और अल्लाह सबसे बेहतर रिस्क देने वाला है। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।

مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه

عسره يسرا. وكأي من قرية عتت عن أمر

0: जॻह जा पावा ऐं पाइप ॾेढ ॿ चार छह नव ऐं ॿारहं इंच में प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहराबपुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे

मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में

0: गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301-9196-8101।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।

0: जी समय प्रोग्राम रोशन सुबुह में अवां सां गॾु गॾु आहियूं ऐं हिन वक़्तु असां प्रोग्राम रोशन सुबुह मां ॿुधो पिया GFM 88 जे नेटवर्क तां, जंहिंमें सखर, लाड़काणो, मीरपुर ख़ासि, मोरो ऐं मेहरापुर, सकरंड, मटियारी ऐं मातली स्टेशन तां तव्हां असांजो प्रोग्राम लाइव ॿुधो पिया, जंहिंमें अॼु असां ज़िकिर करे रहिया आहियूं, ॻाल्हि करे रहिया आहियूं भिट जो भिटाई हज़रत शाह लतीफ़ भिटाई रहमत अलाह जो हवाले सां असां वहां सां ॻाल्हि ॿोल कयूं पिया ऐं उन जा ई जेके असां कलाम वहां खे ॿुधायूं पिया ऐं असां वहां खे सवाल बि नोट करायो आहे त हज़रत शाह लतीफ़ भिटाई रहमत अलाह जो अॼु काओं उर्स मुबारक आहे, तव्हां असांखे ॿुधाए सघो था इनबॉक्स में मैसेज ज़रिए बि तव्हां असांखे सवाल जो जवाबु ॿुधाए सघो था, तव्हां असांखे GFM 88 जी ID जेका आहे फेसबुक जी, तव्हां असांखे उन ते बि सवाल जो सही जवाबु ॿुधाए सघो था ऐं असांजो मोबाइल नंबर आहे 0333212288 ते बि तव्हां असांखे पंहिंजे सवाल जो सही जवाबु ॿुधाए सघो था। त साईं मुंहिंजा असांजे लतीफ़ जो पार्कू ऐं लतीफ़ जो मुसाफ़िर ऐं भिटशाह ते लतीफ़ ते काफ़ी सारा किताब लिखंदड़ असांजो दोस्त ऐं हिन वक़्तु बि असांजो मुसाफ़िर आहे ऐं जेको मुसाफ़िरी में वञे पियो ट्रेन ज़रिए हुन जी जेका रवानगी आहे मीरपुर माथेले खां घोटकी ज़िले खां सखर खां थींदा ऐं हिन वक़्तु वञनि पिया भिटाई सरकार जे उन प्रोग्राम में, अदबी प्रोग्रामनि में असांजो शाइर अदीब ग़ुलाम शबीर पीराई असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहे, उन सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। ग़ुलाम शबीर, अस्सलामु अलैकुम। साईं छा अला ख़ुशि आहियो त भई ठीकु
1: आहे।
0: साईं जेको मूंखे यादि पए थो त ॻोठु मशालो मसूवा मीरपुर माथेलो ज़िलो घोटकी ग़ुलाम शबीर पीराई, बिल्कुलु पुराणो नालो आहे ऐं असां जेको आहे सो तव्हां सां जेको तालुक़ु आहे हिकिड़ो पुराणो आहे ऐं तव्हांजो हिकिड़ो तालुक़ु जेको आहे भिटाई सरकार सां पुराणो आहे। अॼु जेको असांजो उर्स मुबारक शुरू थी चुको आहे, पूरी सिंध में मोकल जो ॾींहुं बि आहे ऐं लखे न हज़ारे न लखे पांधीड़ा भिटशाह ते पहुची चुका आहिनि ऐं भिटाई सरकार जो जेको सहन आहे उहो सिंगारियल आहे ऐं तव्हांजो जेको आवाज़ अचे पियो ट्रेन वारो, तव्हां बि उन तरफ़ मुसाफ़िर आहियो, रवान तव्हां आहियो, त तव्हां पंहिंजो थोरो तारीफ़ कराइजो असांजे सामाइन खे, असांजे GFM 88 जे नेटवर्क तां तव्हांखे असां भली कर पिया चऊं। माशाल्लाह ज़बरदस्त। अच्छा तव्हां सर ग़ुलाम शबीर, तव्हां भिटे सरकार ते केतिरा किताब लिखिया आहिनि?
1: सर अलहमदुल्ला
0: सही। अच्छा भिटाई सरकार खां तव्हां कीअं जेको आहे सो मुतासिर थियो, तव्हां किताब लिखणु शुरू कया ऐं पुलिस डिपार्टमेंट जी नौकिरी हूंदे तव्हां एॾी महिनत पियो कयो पिया, तव्हांखे कीअं टाइम मिले पियो? जी जी बिल्कुल बिल्कुल कोई ज़रूरत कंदा हुआ
1: जी। पोइ जॾहिं को बि अहिड़ो भिटाई साईं जो सुवाल ईंदो हुयो त बाबा ही बैत कहिड़े सुर में आहे या का सिर्फ़ नोट कराई वेंदी या हुनजो सिर्फ़ सुर पुछियो वेंदो, त असांखे ॻोल्हण जे लाइ काफ़ी रिसालनि जी ज़रूरत हूंदी।
0: सही।
1: पोइ असां कोशिश करे उहे किताब ख़रीद कया प्रोग्रामनि लाइ लतीफ़ सरकार जे हवाले सां असां उहे किताब ख़रीद कया, रिसाला ख़रीद कया
0: किताब लिखिया आहिनि उन में तव्हां कहिड़ी मौज़ूअ ते तव्हां लिखियो आहे?
1: असल में लतीफ़ सरकार जी ईअं सम्झो त पैदाश खां वठी वफ़ात ताईं ऐं उन खां अलावा साईं जी जो शेरो शायरी आहे सॼे फिक्र खे जेको आहे ऐं कोशिश करे हर किताब हर रिसाले में कोशिश कई आहे।
0: सही। अच्छा जेको तव्हां हिन वक़्तु पंहिंजो मुसाफ़िर आहियो ट्रेन में वञो पिया, उते तव्हांजो इनवाइट थियल हूंदो अदबी प्रोग्रामनि में?
1: जी जी।
0: अच्छा, तव्हां उते केतिरा अवार्ड खणी चुका आहियो शाहद लतीफ़ भिटाई रहमत अलाह जे हिन प्रोग्रामनि में?
1: पर मुख़्तलिफ़ इदारनि तरफ़ां या रेडियो पाकिस्तान जे प्रोग्रामनि तरफ़ां काफ़ी सारा सर्टिफिकेट अवार्ड मिली चुका आहिनि।
0: जी जी।
1: उन खां पोइ बदमे रूहान हैदराबाद उन्हनि जेको आहे शाह लतीफ़ अवार्ड ॾिनो। उन खां पोइ ॿिया काफ़ी सारा अहिड़ा अवार्ड आहिनि सर्टिफिकेट आहिनि जेके मिली चुका आहिनि मुख़्तलिफ़ आहिनि, यानी की सम्झो त हिकिड़े
0: जी जी
1: पंहिंजे कैटेगरी जे हवाले सां।
0: ग़ुलाम शबीर, अॼु जेको हीउ असांजो उर्स मुबारक शुरू थी चुको आहे शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमत अलाह जो, त हिन वक़्तु तव्हां भिटाईअ खे अॼु बि तव्हां कीअं पिया भायो, तव्हां कीअं पिया ॾिसो, ऐं अहिड़े क़िस्म जेको पैगाम ॾियणु चाहियो असांजे सामाइन खे? असांजो हीउ प्रोग्राम पूरी सिंध में आनियर आहे, असांजूं 8 स्टेशनियुनि जाते प्रोग्राम लाइव हले पियो, तव्हां कहिड़ो पैगाम ॾियणु चाहींदो सामाइन खे, लिसनरनि खे?
1: मुहबत ऐं प्यार जो पैगाम ॾिनो आहे।
0: जी जी, बेशक।
1: असां कोशिश कयूं त प्यार ऐं मुहबत जे पैगाम खे अॻिते आणियूं, छा साईं जे फिकर खे पढ़ूं।
0: सही।
1: अगरि असां जेकॾहिं हुनखे सही नमूने पढ़ियोसीं त मां सम्झा थो त असां सभु कुझु हासिल करे वठंदासीं।
0: सही। अच्छा, को भिटे सरकार जो अहिड़ो को बैत शायरी जी चूंड जेका असांजे सामान ताईं अवां पहुचायो, का यादि आहे त?
1: जी जी, बिल्कुलु। सारी रात सुभान जागी जनी याद पे
0: बाबा
1: उनजी अब्दुल लतीफ जे मिटे लधो मान ओरे तन सलाम आगे जी उनजे
0: वाह
1: मोहब्बत पाए मन में रंडा रोरिया जन समझो शराफन अणतोरियो ही अदायो छो त असां जेको ही कम कयूं था
0: जी जी
1: इहो मुर्शिद लतीफ़ जी हाज़िरी में शल अॻे क़बूल पए। कोशिशि आहे असां हर असांजे अदीब मुर्शिद जी कोशिशि हुअणु घुरिजे त घटि में घटि जेका हुनजे फिकर हुनजे रिसाले ते कमु कनि, पोइ खणी छो न उहो ॿ न चार न हुजे। जेकॾहिं असां इन शइ खे हाणे सां ई कंदासीं त अॻिते हली असां हुनजे असुल शयुनि ते पहुची सघंदासीं।
0: ग़ुलाम शबीर साईं, तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हां असां जी एफ एम 88 जे नेटवर्क ते तव्हां असांखे टाइम ॾिनो, तव्हांजा लख कुर्ब, ऐं तव्हांखे असां कलाम ॿुधाईंदासीं भिटाई सरकार जो, कंहिंजी आवाज़ में हुजे जेको असां तव्हांजे कलाम
1: ॿुधायूं। असांजी तमामु हिकिड़ी मशहूर फनकार आहे माई भागी,
0: माई भागी
1: भागीअ जे आवाज़ में भिट जा भिटा भिट ते
0: बिल्कुलु। वॾी महिरबानी, असां चूंड कयूं था ऐं कोशिशि कयूं था त माई भागी जे आवाज़ में तव्हांखे असां भिटाई सरकार जो कलाम ॿुधायूं। ग़ुलाम शबीर, अवां जी वॾी महिरबानी, लख कुर्ब। जी हा, समय प्रोग्राम रोशन सुबुह में असांजो लेखक शाइर अदीब ग़ुलाम शबीर पीराही सां अव्हांखे कचहरी कराईसीं ऐं कुझु भिटाई सरकार ते हुन ॻाल्हायो, शायरी बि ॿुधाई, साईं जे लख कुर्ब। त असां उन जे पसंदि असां माई भागीअ जो कलाम अव्हांखे ॿुधाईंदा ऐं गॾिजी पाण बि ॿुधूं पिया।

जी साईं मुंहिंजा प्रोग्राम रोशन सुबुह मां ॿुधो पिया जी एफ एम 88 जे नेटवर्क तां, जंहिंमें सखर, लाड़काणो, मीरपुर खास, मोरो, मेहरापुर, मटियारी, सकरंड ऐं मातली स्टेशन तां तव्हां असांजो प्रोग्राम ॿुधो पिया ऐं मां जो मेज़बान नेमत अलाए जुणे जो अव्हां जी ख़िदमत में हाज़िर हाज़िर। जी असां असांजो अॼोको जेको सुवालु आहे तमामु आसान सुवालु आहे, तव्हां कंहिंखां बि मालूमात वठी सघो था, कंहिंखां बि तव्हां पुछा करे सघो था, जेके लतीफ़ जा पार्कू आहिनि। त असांजो अॼु जो सुवालु आहे त हज़रत शाह लतीफ़ भिटई रहमत अलाह जो अॼु काओ उस मुबारक आहे। जी हा, सुवालु तमामु आसान आहे त हज़रत शाह लतीफ़ भिटई रहमत अलाह जो अॼु काओ उर्स मुबारक आहे। तव्हां असांखे पंहिंजो सुवाल जो सही जवाब मोकिले सघो था। असांजा जेके नवां दोस्त प्रोग्राम ॿुधनि पिया उनखे ॿुधाईंदासीं। SMS ज़रिए तव्हां असांखे मोबाइल जे राइट ऑप्शन में वेंदव, उते तव्हां LRK लिखी स्पेस ॾींदव, पंहिंजो नालो, पंहिंजे ॻोठ जो नालो, सुवाल जो सही जवाबु तव्हां सेंड कंदव 8881 ते, ऐं GFM88 जी ID ते फेसबुक ते तव्हां असांखे पंहिंजो सुवाल नोट कराए सघो था, ऐं तव्हां असांखे सुवाल नोट कराए सघो था मोबाइल नंबर ते बि। असांजो फिक्स 10 बजे खां बाद में असांजी मोबाइल आन हूंदी, तव्हां खां सुवाल वठंदासीं। मोबाइल नंबर असांजो आहे 0333221322888। जी हा, आसान नंबर, आसान तरीक़े सां अव्हां खे वरी आहिस्ते ॿुधायूं था, मोबाइल नंबर आहे 0333221322888। असांजो नंबर आहे, तव्हां असांखे सुवाल जो सही जवाबु असांखे ॿुधाए सघो था। त समीन असां हिन वक़्तु वरी हलंदासीं न्यूज़ ब्रेक जी तरफ़ ऐं कमर्शल ब्रेक जी तरफ़, वरी वापसि ईंदासीं, कॾहिं बि न वञिजो।

0: It's 10 a.m. This time check is...
1: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।

0: hecho día sin queja y these police stations peta cámara. Yo no ne cotli que vor peta cámara hai. Inshallah tala main con hi chorunga. Riyasat e Pakistan ne ye faisla karna hai. Hamare liye qaumi mafad zyada ahem hai ya noon league ka mafad zyada ahem hai. Lag aise raha hai ki riyasat ka har faisla qaumi mafad ko tarjeeh dene ke bajaye noon league ka mafad को तरजीह दे रहे हैं और सबसे भरकर इसका नुकसान इस मुल्क का इस ऐसा गया आवाम का हो रहा है और अब हम खामोश होके ये तमाशा नहीं देख सकते. क्या मैं ये बर्दाश्त करूं कि मेरे कैंडिडेट के गांव में 30 पोलिंग स्टेशंस पे कब्जा किया जाए? क्या हम पुरअमन रहते हैं, पुरअमन रहना चाहते हैं? वरना मैं भी सदर सरदारी का बेटा हूँ. मैं भी मीर शाहनवाज भुट्टो और मीर मुर्तजा भुट्टो का भांजा हूँ. मैं सियासत अगर करना चाहता हूँ तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की तरह करना चाहता हूँ. मुझे मजबूर ना करें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये सोचे.
1: आजाद कश्मीर के चूं नतीजन पीपल्स पार्टी ए नवाज लीग के एक भेरों बीहर आमू सामू आने छो. पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जा नून लीग मथा आजाद कश्मीर में बदतरीन धांधलियों का इल्जाम. नतीजा कबूल का भी इनकार. बिलावल भुट्टो जरदारी मुजफ्फराबाद में कारकुनन के खिताब कदे कौमी मुफाद के पोते कर नून लीग के मुफाद के तरजीह देो सिलसिलो नो ना. रियासत के हाँ फैसलो करो पवो तो कौमी मुफाद अहम है या नून लीग जो मुफाद अहम है. मरहलेवार चूंड धांधली लाई कराई व्यूं आजाद कश्मीर में पैंजन वोटन जो तहफुज कदस अवहो हक वी दींदस कोई हटन वारो ना है न ही कहे आडो झुकंदस. पुरमन रहन चाहिया तो न आऊं बे सदर जरदारी जो पुट मीर शाहनवाज ए मीर मुर्तजा भुट्टे जो भाणेजो आया. शहीद बेनजीर वारी सियासत करण चाहिया तो मुख्य मजबूर न कयो वने.

0: बिलावल साहब, इलेक्शन जो फैसलो रियासत न पर आवाम कंदो आहे। तव्हां खे पंहिंजे बयानीअ ऐं कम ते ध्यानु ॾियणु घुर्जे। बिलावल भुटो विसारे वेठो आहे त हिकु साल खां आज़ाद कश्मीर में संदन हुकूमत आहे। कांग्रेस पार्टीअ जे दौर में आज़ाद कश्मीर जूं हालतूं ख़राब थियूं। सियासी बयाननि ऐं रोयण पिटण सां कुझु बि नाहे थींदो। कामयाबीअ लाइ कारकर्दगी एजेंडा ऐं बयानो हुजणु घुर्जे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ जो पीपल्स पार्टी चेयरमैन खे जवाब। मरियम नवाज़ चयो आहे त गिलगित बल्तिस्तान जे चूंडनि में पीपी जी कामयाबीअ ते वज़ीर आज़म वाधायूं ॾिनियूं। आज़ाद कश्मीर में कामयाबी न मिलण ते बिलावल भुटो धांधलीअ जो इल्ज़ाम मणे छॾियो। सिंध में लाॻीतो 17 साल हुकूमत कंदड़नि वटि ॿुधाइण लाइ कुझु बि नाहे। रोड टुटल आहिनि, आवाम ट्रांसपोर्ट जी सहूलियत घुरे पियो। सिंध जा रोड ऐं गवर्नर ठीकु करियो। कारकर्दगी हुजे हा त पीपी चेयरमैन खे तनक़ीद जो वक़्तु न मिले हा।
1: पंजाब में मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा का टीवी पे एक रिकॉर्डेड खिताब सुना। वो एक मिसाल है कि जी एक चोरी ऊपर से सीना चोरी, और जिस तरीके से वहां पे मैंडेट चोरी हुआ, खुले हम असले की नुमाइश की गई और पीपल्स पार्टी के वर्कर को शहीद किया गया। जिस तरीके से खैराती इकतदार पे पीएमएलएन की हुकूमत बैठी हुई है फॉर्म 47 पे, वो पूरे पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है कि आज भी जो इलेक्शन हुए जो फैसला होता है वो आवाम करती है। अगर आपने कोई तरक्याती काम किया तो उसका फैसला आवाम ने करना है। सिंध में अगर तरक्याती काम किया है तो उसका फैसला आवाम ने करना है। क्या वजह है कि आपको 2024 में
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569।
4: इरशाद ऑटोज आई होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोज आई होंडा शोरूम मेहरापुर। नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320-1800-003।
5: अस्सलाम वालेकुम अदा।
6: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
5: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
6: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
5: न अदा।
7: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे।
5: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
6: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
5: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
7: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मेरापुर।
6: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
8: 0301-399-2836।

मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुनते रहो GFM 94 स्टूडियो सीजन 15।

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जोपुर एतमाद अम्बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ती जिलाई आसिम हुसैन आराई 0307-3592120
3: खुशखबरी लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट बार बार वेक्स और शेविंग से निजात नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
4: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GAFM 94

में तव्हां महिनत कंदव ऐं हिन में तव्हां जाखोड़ कंदव त हिन में तव्हांखे मालूमात मिलंदी। ऐं मां जंहिं दोस्त सां ॻाल्हायो त उहो बि रेडियो जो हिकिड़ो लिसनर हुयो ऐं क्विज़ प्रोग्रामनि मां हुन जेको शौक़ु पैदा थियो त अॼु हुन जा 8 किताब लिखियल हिन ब्रिटिश सरकार ते, त इहा हुन जी महिनत ई, इहा हुन जी जाखोड़ ई, ईअं थोरी कोशिशि कयो, महिनत कयो त मां जेको अॼु मौज़ू ब्रिटिश सरकार ते ॻाल्हायां थो त मां उन किताबनि मां ई ॻाल्हायां थो। इहा हुन जी महिनत आहे, हुन जी जुस्तजू आहे। ऐं अहिड़े ई हवाले सां तव्हां बि महिनत कंदा रहो ऐं अहिड़ा कोई सवाल पंहिंजो उन्हनि जा जवाब ॾींदा रहो। समझा शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमत अलाह जे कलाम में मौज़ूअनि जी घणाई बि मौजूदु आहे त साॻे वक़्तु शयुनि तोड़े लकाउनि खे ॾिसण जो अंदाज़ बि वटसि पंहिंजो आहे। उहे शयूं माण्हू जेकी आम ख़ल्क जे नज़र में कीन जहिड़ा आहिनि, भिटाई रहमत अलाह उन्हनि खे ई मथाहों ऐं मथ भरो कयो आहे। कमज़ोरनि खे बल वता कयो, धरतीअ जे कखनि काननि वलियनि पोरियतनि माण्हुनि खे ॻायो आहे ऐं सभ खां कमज़ोर हिसे औरत खे सूरमी करे पेश कयो ऐं ॿिया बि केतिरा ई मौज़ू आहिनि जेकी शाह जे रिसाले जो हिसो आहिनि, जहिड़ी तरह शाइर शाह जी शाइरी अमल माणिक जीअं हिकु विथ तौरु सिंध वासियुनि लाइ मौजूदु आहे, उनखे असांजी ख़ुशि नसीबी चइजे त उन में को वधा कोन्हे।

जीअं साईं मुंहिंजा शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह खे भेटा ॾींदड़ आशिकनि में अॼु ताईं काई बि कमी नाहे आई। इन हवाले सां सरकारी सतह ते बि भिटाई रहमतुल्लाह अलैह साहिब जी शायरी बाबति तहक़ीक़ कंदड़ इदारा मौजूदु आहिनि, पर ख़ानगी तरह बि सिंध जा आलिम, अदीब ऐं दानिशर हर रोज़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह जे कंहिं न कंहिं पहलूअ खे पंहिंजे कलम ज़रिए निर्वार करे संदसि पंहिंजी अक़ीदत जो इज़हार कंदा आहिनि। उन मां के संदसि पैगाम में लिकल नुक़्तनि खे निर्वार करण जी कोशिशि कंदा आहिनि, त के वरी आईंदड़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह ते रिसर्च कंदड़नि लाइ सवलाई पैदा कंदड़नि जो किरदारु निभाए संदसि पंहिंजे इश्क जो इज़हार कंदा आहिनि। ऐं हिन किताब शाह जूं वायूं तहक़ीक़ी जाइज़ो अलफ बे वार जेके आहिनि, लेखक असांजो जेको मोहतरम ग़ुलाम शबीर पीराईअ जंहिंजो असां इंटरव्यू बि कयोसीं, इन किताब में लिखी अहिड़ी कोशिशि कई आहे तोड़े जो भिटाई रहमतुल्लाह अलैह जे हुज़ूर अॻु बि हो पर पंहिंजे कलम ज़रिए ख़िराज अक़ीदत पेश करे चुको आहे। ऐं भिटाई रहमतुल्लाह अलैह साहिब जी लफ़्ज़नि में जेको आहे सो तमामु घणी शायरी बि लिखी आहे, उन जे बैतनि खे उन जे वायन खे तमामु घणो जेको आहे सो ज़ेर ज़बर में लिखियो आहे ऐं काफ़ी किताब लिखिया आहिनि जंहिंजी पाण ॻाल्हि कईसीं। त समय वरी असां शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह जो कलाम ॿुधूं पिया।

0: جس
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामूहू वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम बी

उन जा खणंदासीं। जंहिं सवाल जो जवाबु ग़लति ॾिनो आहे त असां हुन नाला न खणंदासीं ऐं असांखे कुझु मालूमात ॾींदासीं भिटाई सरकार जे हवाले सां। त वखर सो विहाए जो पए पुराणो न थिए। संस शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमत अलाह जे संदसि अहिड़ो ई मुहबत जो भरियो पैगाम हक़ सच जी अहमियत खे उजागर कंदो रहे थो। ऐं उन खां अलावा शायरीअ में समयल फ़हम ऐं फ़िक्र सिक प्रीत जे पांधड़नि लाइ मशाले रहा आहे। ऐं साईं जा सदन पुॼाणा बि शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई रहमत अलाह जी ॾात जी जोति अॼु ताईं बि झकी नाहे थी। ऐं उहा कॾहिं झकी थींदी बि कोन, छो जो उन जे अंदरि इहो जौहर समायल आहे जेको सरासर रोशनीअ जो मीनार आहे। जहिड़ी तरह ॾीए मां ॾीओ ॿरंदो आहे, अहिड़ी तरह भिटाई साहिब जा आशिक ऐं चाहींदड़ संदसि पेश कयल पैगाम खे अॼु ताईं मुख़्तलिफ़ तरीक़नि सां फहिलाए रहिया आहिनि।

जी समेन असांजे सवाल जो जेको सही जवाबु अव्हांखे ॿुधाईंदासीं त शाहब्द लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह जो अॼु 283 उर्स मुबारक आहे जेको अॼु खां शुरू आहे ऐं उनजो इख़्तिताम थींदो याने पंहिंजो 31 जुलाई जुमे जे ॾींहुं आख़िरी उर्स मुबारक हूंदो त असांजो शाहब्द लतीफ़ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह जो 283 उर्स मुबारक आहे। इन सवाल जा जेके सही जवाब असांखे दोस्त ॾिना आहिनि इक़बाल लाशारी झलोरी मीरपुर ख़ासि खां पहिरें नंबर ते असांखे सवाल जो सही जवाबु ॾिनो। भाउ जी वॾी महिरबानी इक़बाल लाशारी जी। ऐं शफ़ी मोहम्मद मरी पंहिंजो ॻोठु बाजी खान तालुके सिंधड़ी खां जवाबु ॾिनो। ऐं असांजो खादम हुसैन मलिक लोको शेड रोहिड़ी खां बि सही जवाबु ॾिनो। भाउ जी वॾी महिरबानी। ऐं मोहम्मद ख़ान कुंभार हाले पुटा स्टाफ खां बि सवाल जो सही जवाबु ॾिनो आहे। भाइरनि जी वॾी महिरबानी। अज़ीज़ सोलंगी मीरपुर ख़ासि खां उन बि सवाल जो सही जवाबु ॾिनो आहे। भाइरनि जी वॾी महिरबानी। लख क़ुर्बानी।

सिरात मुस्तक़ीम जो नोश बख़्शियो आहे। शाद लतीफ़ भिटाई रहमत अलाए शेर बैतन जी शिकिल में चया ऐं इज़हार कया, पर उन्हनि बैतनि सां गॾोगॾु उन्हनि खे मेठास ऐं मुहबत सां हूंगण लाइ वायूं बि चयूं। ऐं जिन में दर्द बि आहे त दुआ बि आहे, दरमान बि आहे त दवा बि आहे, झूंगार बि आहे त प्यार जी पचार बि आहे। शायरीअ जे सिनफ़नि मां वाई रागणी बि आहे ऐं सुरनि जो सुरूर बि आहे। अकेलाई या महफ़िल में ॻाए वॼाए माण्हुनि खे महफ़ूज़ कयो वञे थो ऐं पंहिंजे दिलनि खे फ़रहत ऐं सुकून बख़्शे सघे थो।

ऐं साईं जा असांजो रांझन कोरी गोट खां बि दोस्त सवाल जो सही जवाबु ॾिनो, वॾी महिरबानी। ऐं समय जा इन ई ते पंहिंजो प्रोग्राम रोशन सुबुह जो वक़्तु पहुचे पियो पंहिंजे पुॼाणी ते। हयाती रही त इनशाला अव्हां सां मुलाक़ात ज़रूरु थींदी। तेसि ताईं पंहिंजे मेज़बान नेमत अलाह जुण जो खे ॾींदा इजाज़त। अलाह निगाहबान।

फलूजा ईरान जे एटमी सरगर्मियुनि बाबति मूंखे इसराइली वज़ीर आज़म जी ॼाण जी ज़रूरत न आहे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प जो फॉक्स न्यूज़ खे इंटरव्यू, डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त ईरान जे मामले ते मौक़िफ़ इंतिहाई सख़्त आहे। मुआहिदो न थियो त ईरान में मिशन मुकमिल कयो वेंदो। ईरान खे हाणे मुआहिदनि जी भञकड़ी करण न ॾिनी वेंदी। सामूंडी लंग हर्मुज़ ते अमेरिका जो मुकमिल कंट्रोल आहे। ईरान जे पावर प्लांट्स ऐं पुलनि ते हमलनि जो को बि इरादो न आहे। अमेरिका ईरान मुफ़ाहमती यादाश्त जी बहालीअ जे वेझो पहुची विया आहिनि। परडे॒ही ख़बरू इदारे फॉक्स न्यूज़ जी दावा ख़बरू इदारे जी रिपोर्ट में चयो वियो आहे त पाकिस्तान कतर ऐं मिस्र हर्मुज़ लंग जे इंतिज़ामी तरीक़ेकारनि ते ख़िलाफ़ ख़तम करण जी कोशिश में रुधल आहिनि। ईरान ऐं उमान टहिकाड़ी कंदड़नि पारां पेश कयल तजवीज़नि सां इतफ़ाक़ करे चुका आहिनि। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प हतमी फ़ैसिलो कंदो। ईरान सालसनि ज़रिए अमेरिका जूं पहुचायल तजवीज़ूं रद्द करे छॾियूं। नायब ईरानी परडे॒ही वज़ीर क़ासिम ग़रीब आबादी चयो आहे त अमेरिका सां सालसनि ज़रिए ॻाल्हियूं इस्लामाबाद में थियूं हुयूं, जेके अमेरिका जे ग़ैर ज़रूरी मुतालबनि सबबि नाकाम थियूं। जंहिं बाद अमेरिकी वफ़द इस्लामाबाद खां वापसि हलियो वियो, जंहिं बाद ईरान बि ॻाल्हियूं जारी रखण जी ख़्वाहिश ज़ाहिर न कई। ईरानी फ़ौज चयो आहे त अमेरिका तेहरान जी ॿीहर नाकाबंदी कई त फ़ैसिले खे जंग में

शहरनि जे सरताज हज़रत शाह लतीफ़ भिटाई जी 283 से उर्स जो तकरीबू शुरू। सिंध जे गवर्नर निहाल हाशमी मज़ार ते चादर चाढ़े उर्स जो इफ़्तिताह कयो। सिक्योरिटी जा सख़्त इंतज़ाम कया विया आहिनि। मुल्क जे कुल कुझु मां पांदीड़नि जी आमद जारी आहे। गवर्नर निहाल हाशमी चयो आहे त सकर हैदराबाद मोटरवे जी तामीर लाइ 6 अरब रुपया हड़प कंदड़ मटियारी जे भरपासे में ई आहिनि। सखर हैदराबाद मोटरवे जो कम हिन साल शुरू थींदो।

0: कंदकोट में एसटीपी पारा गैर कानूनी तरसीलदारी आबादकारी खिलाफ डीसी आफिस आलो धरणो। एसटीपी अगवाणन चयो त सिंध में धारी आबादकारी जी नेकाली लाइ इंतजामिया रुगो सखणा ऐलान कया आहिनि। अञा ताईं नेकाली न ॾिनी वई आहे। पंज ॾींहनि अंदर गैर कानूनी तौर तरसियल समूरा धारिया न कढिया विया त एहतजाज जो दायरो वधायो वेंदो। कड़ियो गवर भरसां जाम शाख खे गारो, पंजाह फुट गारो, सवे एकड़नि ते बीठल फसल पाणी हेठि गोठाणन जो चवण आहे त हाफिज़ अब्दुल्ला समूह वटां जाम वाह शाख खे गारो लॻो आहे। आपाशी खाते खे आगाह कयो पर केर नाहे पहुतो। पंहिंजी तहत पाणी गारो बंदि करे रहिया आहियूं। हिकु वण सिंध अमर जे नाउ मोम जारी। केटीएन न्यूज ऐं कावस जे सॾ ते सिंध खे मौसमियाती तब्दीलीअ खां बचाइण लाइ वण लॻाइण वारी मोम जारी। मुख़्तलिफ़ शहरनि में सियासी समाजी धुरियुनि पारां वण लॻाइण जो सिलसिलो जारी आहे। सिंध खे सरसब्ज़ रखण वारे अज़म जो बि वर्जाउ।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 03201800003।
3: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03000338569।
4: मेरान आयरन स्टोर हालाणी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
5: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियत दस्तियाब आहिनि।
4: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालाणी।
5: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल। 03003204372 ऐं 02424601000।
6: अस्सलाम वालेकुम अदा।
7: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
6: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
7: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
6: न अदा।
4: यार अॼुकल्ह शहरन तोड़े गोठन में जीअं मेरापुर एफएम 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
6: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
7: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी।
6: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94, नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मेरापुर।
7: राब्ते लाए हाकिम अली जिसकाणी।
8: 03013992836।
9: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी एफएम 94।
10: ओए,
11: प्रमोशन लेटर।
10: कंग्रेचुलेशंस।
11: थैंक यू।
10: वाओ
11: बेबी, Bangalore.
10: I hope.
11: I don't have to ask you anything.

0: तो तुम बैंगलोर कब जा रही हो?
1: मैं बैंगलोर नहीं जा रही, बैंगलोर जाना कैंसिल।
0: तुम अकेला बैंगलोर?
1: और क्या, सुबह जरूर।
2: It's 11:15 AM. This time check is brought to you by
3: White Ish Beauty Cream, glowing skin jo raaz. A product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569।
4: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर। और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।
5: बुक स्टूडियो सीजन 14।

अलावा वो तमाम थे लोग जो कि जिनकी सालगिरह है उनको कहेंगे मैनी मैनी हैप्पी बर्थडे सैटरडे हैप्पी बर्थडे टू यू. उसके अलावा वो लोग जो कि बीमार हैं उनको कहेंगे गेट वेल सून. वो लोग जो कि लाइफ में कुछ अच्छा कुछ बेटर कुछ बड़ा कुछ यूनिक कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं तो विश यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक. बहुत सारी बेस्ट विशेज आप लोगों के लिए कि आप अपने हर काम में कामयाब होते रहें.

0: अखियां रूहानी कहीं, ना वो चेहरा नूरानी कहीं, कहीं दिल वाली बातें भी ना वो सजरी जवानी कहीं, जग घूमे आ थारे जैसा ना कोई, जग घूमे आ थारे जैसा ना कोई, ना तो हसना रूहानी कहीं, ना तो खुशबू सुहानी कहीं, ना वो रंगली अदाएं देखी, ना वो प्यारी सी नादानी कहीं, जैसी तू है वैसी रहना, जग
1: वाह,
0: घूमे आ थारे जैसा ना कोई।
1: कमाल कमाल कमाल, क्या बात है जी, क्या बात
0: अच्छा,
1: है,
0: ये कुछ
1: थैंक
0: लाइनें
1: यू।
0: आपको डेडिकेट हैं।
1: इसमें से कुछ लाइनें मुझे डेडिकेट हैं,
0: हाँ,
1: कौन सी वाली?
0: बस ये आप रख लेना जो
1: चले,
0: आपसे शुरू
1: मैंने रख
0: करें।
1: लिया, कुछ और कहना है?
0: बस थैंक यू, सरदर्द का थैंक यू।
1: ओके, थैंक यू, अपना
0: ओके,
1: बहुत
0: अल्लाह
1: सारा ख्याल
0: हाफिज।
1: रखिए, अल्लाह हाफिज। और इसी के साथ मेरे ख्याल से एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का टाइम भी हो चुका है, तो क्या ख्याल है कि हम कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाएं, क्योंकि अगर मैं अभी गाना प्ले करके जाती हूँ तो फिर हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा लिमिटेड बचता है, एंड फिर हम जो है ना बैक टू बैक कॉल्स नहीं ले पाते, तो हम कोशिश करेंगे कि हम बैक टू बैक ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स लें, ताकि बहुत सारे लोगों को आने का मौका मिले, वो लोग जो कि कॉल्स मिलाते रहते हैं उनकी कॉल नहीं लगती, तो डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे कि उनकी कॉल लगे। सो हियर कम्स अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, वापस आएंगे, स्टे ट्यून्ड।

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 03003385569। खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 03003385569। खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो। जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ, तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलस होंडा मोटरसाइकिल पर एतमाद, अम्बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट दे दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ति जिला आसिम हुसैन आराई, 03073592120।
2: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

वरना इसके पर रखा भला क्या है, एक तेरा यार गिर रही।

अरे कॉल ड्रॉप हो गई, देखिए कितना अच्छा गाना चल रहा था. चलेंगे, कोई बात नहीं. थैंक यू सो मच सईद भाई, आपने गाना बनाया, गाना सुनाया और बहुत अच्छा गाना. और ये वाला तो मैं सर्च नहीं कर सकती अब आप कौन सा गाना कहने वाले थे. खैर कोई बात नहीं, हमारे पास टाइम भी बहुत लिमिटेड है. हमारा सेगमेंट होने वाला है 12 बजे के बाद हरा भरा पाकिस्तान, और मैं प्ले कर रही हूँ आसिम अज़हर की आवाज़ को. इसको हम सुनेंगे, इन्जॉय करेंगे और इसी के साथ हम वापस आएंगे. और जब हम वापस आएंगे तो हम सेगमेंट के साथ आएंगे. स्टे ट्यून्ड, जिंदगी गुलजार है.

दरियाऊ चाहे तो आऊं सदाई जंग में फाथल रहा। ईरान जे एटमी सरगर्मियुनि बाबति मूंखे इसराइली वज़ीर आज़म जी ॼाण जी ज़रूरत नाहे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो फॉक्स न्यूज़ खे इंटरव्यू। डोनाल्ड ट्रंप चयो त ईरान जे मामले ते मौक़िफ़ इंतिहाई सख़्त आहे। मुआहिदो न थियो त ईरान में मिशन मुकमिल कयो वेंदो।

सखर हैदराबाद मोटरवे जा पैसा खाईंदड़नि जा पेरा मटियाणी में मिलनि था। सिंधु में असांजो साहो आहे। सिंधु दरिया हज़ारनि सालनि खां वहंदो रहियो आहे ऐं वहंदो रहंदो। भिक्षा में हज़रत शाह अब्दुलतीफ़ भिटाई जे उर्स जो इफ़्तिताह करण बाद सिंध जे गवर्नर निहाल हाशमी चयो आहे त सखर हैदराबाद मोटरवे जी तामीर लाइ 6 अरब रुपया अर्ब कंदड़ मटियारी जाई आहिनि। सखर हैदराबाद मोटरवे जो कमु हिन साल शुरू थींदो। भारत पाणीअ ते धाड़ो हुयो त मूं तोड़ जवाबु ॾींदासीं। सिंध मां धाड़ियल राज नवाज़ शरीफ़ ख़तमु कयो हो।

शायरन जे सरताज हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जे 283 उर्स जूं तकरीबूं शुरू थी वियूं आहिनि। सिंध जे गवर्नर ॾांहुं लाशमी मज़ार ते चादर चाढ़े उर्स जो इफ़्ताह कयो। सिक्योरिटी जाइ ताईं सख़्त इंतज़ाम कया विया आहिनि। मुल्क जे कुट कुछ मां पांदड़नि जी आमद जारी आहे। कंदकोट में SDP पारां गैर कानूनी तरसीलधारी आबादकारी खिलाफ़ DC आफ़िस आॾो धरणो हयो। SDP अॻवाननि चयो त सिंध में धारी आबादकारीअ जी नेकालीअ लाइ इंतिज़ामिया रुॻो सखणा ऐलान कया। अञा ताईं नेकाली न ॾिनी वई आहे। 5 ॾींहनि अंदरि गैर कानूनी तौरु तरसियल समूरा धारिया न कढिया विया त एतिजाज जो दायरो वधायो वेंदो।

चढ़ियो घवर भरसां जाम शाह खे 50 फुट गारो सवे एकड़नि ते बीठल फसल पाणी हेठि मोटाणनि जो चवण आहे त हाफिज़ अब्दुल्ला समूह वटां जाम बाह शाह खे घारो लॻो आहे। आपाशी खाते खे आगाह कयो पर केर बि नाहे पहुतो। कंहिंजी तहत पाण घारो बंदि करण में रुधल आहियूं। हिकु वण सिंध मर्जे नाओ मोम जारी केटीएन न्यूज़ ऐं कावज़ जे सर ते सिंध खे मौसमियाती तब्दीलीअ खां बचाइण लाइ वण लॻाइण वारी मोम जारी। मुख़्तलिफ़ शहरनि में सियासी समाजी धुरियुनि पारां वण लॻाइण जो सिलसिलो जारी आहे। सिंध खे सरसब्ज़ रखण वारे अज़म जो बि वर्जाओ।

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ, महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, ठरी रोड, मेहरापुर। 03003385569।

0: जॻह जा पावा ऐं पाइप ॾेढ ॿ चार छह नव ऐं ॿारहं इंच में प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-54-431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड, मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320-1800-003।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओं दुकान खोलियो अथमि पर हले ई नथो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
2: न अदा।
4: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े ॻोठनि में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो। मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
2: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी?
3: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी आहे।
2: अदा जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मेरापुर।
3: राब्ते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
5: 0301-399-2836।
6: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
3: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज़ 90।

Beautiful song and welcome back. बहुत सारे messages और comments आप लोग okay.

ओके, इसके अलावा हमें मैसेज रिसीव हुआ है, हे स्वीट आरजी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? सुल्तान फ्रॉम हैदराबाद, सुन रहे हैं आपका शो, आज भी कमेंट किया है पेज पे, वो शामिल नहीं करती, किया है शामिल हाले सुल्तान, अच्छा हाले सुल्तान है, ओके मैं समझी सिर्फ सुल्तान है।

ओके, इसके अलावा जी सबसे पहले हम कुछ मैसेजेस कंक्लूड कर लेते हैं. गुलाब खान लगारी गोड बाशम खान रिंद से हमारे से मौजूद हैं जी. गाजी खान रिंद और मैसेजेस कर रहे हैं और कहते हैं कि जी चाचा मंठार रिंद, रिजवान अली रिंद, फैजान अली रिंद, शहजाद अली रिंद, छोटी गुनैन जहरा बाजी, आपकी कंपेयरिंग बहुत अच्छी है. आपका हंसना मुस्कुराना प्रोग्राम को चार चांद लगा देता है. ओके, थैंक यू सो मच. आप भी बहुत अच्छे हैं. आप सुनते हैं, आप इसीलिए अच्छे हैं. अगर आप नहीं सुनते तो आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे. और जितने लोग नहीं सुनते वो अच्छे नहीं है. आप जो सुनते हैं वो बहुत अच्छे हैं. ठीक है. अच्छा, मिठड़ी रुखसार सफदर बलोच मोरो से किस बात की माफी मांग रहे हैं. कहते हैं कि फूलों ने जख्म दिए कांटों से, क्या कहूं मैं. अपने अपने थे गेरों से, क्या कहूं मैं. सफदर बलोच, एक से बढ़के एक शेर मौजूद है इनके पास.

0: Thomas Anthony hume sun rahe hain, kehte hain good afternoon to you as well. Aur iske ilawa calls lete hain ji, last and lucky callers check karte hain ki ji kaun hai. Hello, आवाज नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है, चेक करेंगे. हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं?
1: मैं अब्दुल कसूर बात कर रहा
0: हूँ. ओके, पहली दफा कॉल कर रहे हैं?
1: जी जी, मैं पहली
0: नंबर नहीं लगता, आज तो टंग ट्विस्टर है ही नहीं, आज तो हम टंग ट्विस्टर लेकर ही नहीं आए.
1: जी जी, मैं कॉल नंबर डाल के आया, नंबर नहीं लगा, आज की कॉल लगी है, मैं खुशी तमाम आ रही है.
0: अरे वाह, क्या बात है जी, क्या बात है. अच्छा, लास्ट में आपकी कॉल लगी है, तो आप मुझे बताएं आज की अच्छी बात क्या है.
1: जी, किसी को मैं मना सुन रहा हूँ, ऐसे मैं क्या बताऊंगा, किसी की मैं तारीफ क्यों करूँगा, ये तारीफ करूँगा, तारीफ नहीं खुटेंगे, ये खुटेंगे, रात खुटेंगे, उसको तारीफ नहीं खुटेंगे,
0: तारीफ नहीं करेंगे,
1: तारीफ नहीं खुटेगी.
0: अच्छा, तारीफ नहीं खुटेगी.
1: तारीफ नहीं खुटेगी, दिन खुटेगा.
0: अच्छा, ये अच्छा था, दिन खुटेगा, रात खुटेगी, तारीफ नहीं खुटेगी. वाओ, क्या बात है. अच्छा, और कुछ?
1: हाँ, तमाम खुशी आ रही है.
0: थैंक यू सो मच. बहुत सारा ख्याल रखिएगा भाई.
1: अरे बाकी बाकी गाना बताइए, मेरी जानकारी के सुन लीजिए. ये फरमाइश नहीं है, पहले कुछ चीजें नंबर मिला है, जलाल कहने का फूल नाम बताइए.
0: क्या, क्या क्या क्या टाइटल है इस गाने का, कौन से गाने?
1: जलाल कहने का, जलाल कहने का गाना, ये इसके लिए तैयार करें, छोटा यारा चलता तुम्हारा लवर का मूवी कर दो.
0: अच्छा, ये इतना बड़ा नाम है इसका. मैं इसको सर्च कर रही हूँ, अगर तो मुझे मिल गया तब मैं प्ले करूंगी, अगर ना मिला तो जो मैं प्ले करूंगी
1: दूसरा कोई भी गाना चलाऊंगा.
0: चलें, फिर मैं जो प्ले करूंगी वो फिर आपको डेडिकेट करेंगे.
1: हाँ जी, आज मैं तो मेरा बेटा है एक चौकत अली जते, भाई
0: है. चलें, जबरदस्त, थैंक यू सो मच, बहुत सारा ख्याल रखें. जी जी,
1: दो भाई है, एक बेटा है, उसका नाम बताया.
0: Okay, जी, okay. Okay, अल्लाह हाफ़िज़.

पाकिस्तान के दौरे से पहुंचल कोवैती परदेही वजीर जी परदेही आफिस आमद नायब वजीर आजम इसहाक डार कोवैती परदेही वजीर जो आदर भाव कयो परदेही आफिस में कोवैती परदेही वजीर के नायब वजीर आजम इसहाक डार से मुलाकात खिते की सूरतयाल समेत बिन तरफन लागापन से गालियों खिते में जारी तकरार गालियों जरिए हल करने जोर भरियो।

0: इलाक़नि ते बमबारी। अमरीकी सेनेट खां मौजूदु इराक में सऊदीनि ते हमलनि जी रिथाबंदी कंदड़ ईरानी हामी ग्रुपनि जे इथाक़नि ते सऊदीनि सां गॾिजी कार्रवायूं कयूं आहिनि। सऊदी अरब बि कार्रवायुनि जी तस्दीक करे छॾी। ईरान जे हामी ग्रुप चयो आहे त सऊदी ऐं अमेरिकी हमले में संदनि 30 कारकुन मारिजी विया आहिनि, केतिरा ई ज़ख़्मी थिया आहिनि। सऊदी परदेही वज़ीर जो क़तर, बहरीन ऐं कुवैत जे परदेही वज़ीरनि सां राब्तो, हिते जी सूरतहाल ऐं चिकताण घटाइण वारनि कोशिशनि ते ॻाल्हि ॿोल कई वई। ॻाल्हि ॿोल दौरान टिनी मुल्कनि जे परदेही वज़ीरनि बहरी रस्तनि जे तहफ़ुज़ ते ज़ोर ॾिनो। क़तर ऐं बहरीनी वज़ीर ते इराक मां हमलनि जी मज़म्मत बि कई।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एतमाद, आई मा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307359210।

0: मौजूद आहिनि। फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320180003।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-335-69।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
3: न अदा।
5: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
4: हाँ दा, कारोबारी इश्तेहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
3: अदा जल्दी कर, मुखे मुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड, मेरापुर।
4: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी।
6: 0301-399-2836।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: It's 1:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत सा कसीदा एंजॉय करने के साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं. व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से. अगर आप भी व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाना चाहते हैं तो जनाब लगाते रहिए ताकि आप लोगों को पता चले कि खूबसूरतियां जो हैं वो आजकल आप लोगों को कैसे मिलेंगी. तो खूबसूरतियों के बारे में बात करेंगे लेकिन साथ साथ आप लोगों को ये भी बताएंगे कि अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन कैसे करेंगे. और सबसे पहली बात कि आज के प्रोग्राम का टॉपिक क्या होने वाला है. तो आज के प्रोग्राम के टॉपिक की बात की जाए तो आज मैं आप लोगों से सवाल पूछूंगी बिल्कुल ही टॉपिक की जाने बात जाते हैं क्योंकि बहुत से लोगों की मैंने बहुत से लोगों को देखा है. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा हंसते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी नहीं हंसते हैं. दुनिया में आप लोगों को हर तरह की जो है ना इंसान मिल सकते हैं. कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें देखकर आप ये कहते होंगे कि भाई ये इंसान आकर दुनिया में क्यों है क्योंकि वो इतने खड़ूस टाइप के होते हैं. अगला इंसान उनसे अगर बात करने बैठ जाए तो फिर जो है ना वो सोचता होगा कि भाई हम क्यों यहाँ पर बैठे हैं. लेकिन कुछ लोग और ऐसे होते हैं कि वो बहुत कुर्बायती होते हैं. उनके साथ अगर आप बैठ जाए तो आपका दिल करेगा कि बस इनसे बातें करते रहे, एक लाइन इंसान बोलता रहे. लेकिन ऐसी एक और भी बात है कि जो लोग बहुत ज्यादा हंसते हैं या जो लोग कुछ भी नहीं यानी कि उनकी जिंदगी में कुछ नहीं होता, वो सोचते हैं कि भाई हम क्यों आकर हंसे, हमारी जिंदगी में है ही क्या. तो आज मेरा सवाल आप लोगों से कुछ ऐसा होने वाला है. अगर आप फर्ज कर लें कि अगर हंसने पर पैसे मिलते, हाँ जी, जो लोग बहुत ज्यादा हंसते हैं या जिन लोगों की आदत है बिल्कुल भी नहीं हंसना, तो आप मुझे बताएं कि अगर हंसने पर पैसे मिलते तो आप कितना कमा लेते यकीन जाने मैं तो भाई खराब पति होती आप बताएं अपना, आप कितना कमा लेते हैं अगर हंसने पर पैसे मिलते तो आप कितना कमाते. बिल्कुल जी, आज के प्रोग्राम का टॉपिक है. अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हाँ जी जनाब, प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 8881 पर. उसके अलावा अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं तो जी लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज ही जनाब. आप सर्च करेंगे तो आपको आराम से हमारा पेज मिल जाता है. आप आइए और वहां पर आप जैसे ही आएंगे तो आपको हमारे प्रोग्राम व्हाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो की लाइव पोस्ट मिल जाएगी जिसे आपने लाइक करना है, कॉमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे. तो पोस्ट को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और शेयर कीजिए. बताइए आप भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप जिंदा हैं, मुझे पता होना चाहिए, समझ रहे, वरना आप लोगों को मरा हुआ घोषित कर देंगे. मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछा कि आप मुझे बताएं कि अगर हंसने पर पैसे मिलते तो आप कितना कमा लेते, बताइए जरा मुझे. और इसी के साथ साथ अगर आप व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ये भी बताइए आपकी करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल हुई या अभी तक नहीं. क्योंकि भाई देखें, अब कोई बहाना नहीं चलेगा, इतना ज्यादा टाइम हो चुका है प्रोग्राम को चलते हुए. अब आप लोगों के हर करीबी जनरल स्टोर पर व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल होने चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी. और आप इस्तेमाल करना स्टार्ट कीजिए, अब कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी क्योंकि अब जो है ना वो काफी टाइम हो चुका है. आप सुन भी रहे हैं कि व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने से क्या आप लोगों को फायदे मिल रहे हैं, तो लाजमी आप इस्तेमाल किया करें. और बाकी जो नए लोग हमारे साथ मौजूद है जिनको नहीं पता उनको बताएंगे जी, रोजाना आप लोगों को बताएंगे ताकि आप लोगों को पता चले कि मार्केट जब आप जाएं तो आप लोग अच्छे से जान चुके हैं कि आपने कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है. तो व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों को हर तरह का प्रोडक्ट मिल रहा है. बिल्कुल जी, चाहे आप बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, खूबसूरती बढ़ाना चाहते हैं, खूबसूरती की हिफाजत करना चाहते हैं तो आपको व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में हर तरह के प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे. इसी के साथ साथ आप कैसे अवेलेबल कराने वाले अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर ये भी बताएंगे. और आप हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं तो आप लोगों को वेलकम भी कहा जाता है. आदिल हुसैन हमारे पास सबसे पहले मौजूद, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं, मैं ठीक हूं, बताएं. लिखते हैं कि तेरी नजरों को फुर्सत ना मिली वरना मर्ज इतना ला इलाज ना था, हमने वहां भी मोहब्बत बांट दी जहां मोहब्बतों का रिवाज भी ना था. ओके अली अकबर ब्रोही भाई में सुन रहे हैं सक्रेंट से, कहते हैं वेरी नाइस शो सिद्रा मुस्कान, प्रोग्राम की क्या तारीफ करें, अच्छी आवाज के साथ प्रोग्राम गुड है, वेलकम सिद्रा जी सॉन्ग. चलें भाई, मैं आपकी रिक्वेस्ट पूरी करने की कोशिश करूंगी. अखलाक बलोच भाई कहते हैं इहो इहो
सही गाल है, सही गाल है, सही था जो। अच्छा नजीर कोसो भाई, मैं सुन रही बलूचिस्तान से, आपको भी वेलकम कहा जाता है। कहते आज शायद तुम सिर्फ सबर कर रहे हो, मगर कल यही सबर तुम्हारे लिए ऐसी खुशियां लेकर आएगा जिन्हें देखकर तुम कहोगे या अल्लाह, अगर मुझे अंजाम मालूम होता तो मैं इस आजमाइश पर भी मुस्कुरा देता। सबर कभी जाया नहीं जाता, वो हमेशा किसी खूबसूरत अंजाम को जन्म देता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। बिल्कुल जी, प्रोग्राम वाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो, यहाँ पर हैप्पी गर्ल हमारे साथ है। कहती है अस्सलाम वालेकुम माय स्वीट आरजे, आप कैसी हैं, वेलकम टू शो, आपको भी खुशामदीद कहा जाता है। और हमारे साथ ही हिदायतुल अहमदानी, वालेकुम अस्सलाम, की आई हो। और मुश्ताक अहमद कुंभर हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम। वहीद वफाई हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम। सिद्धराज जी बिल्कुल ठीक ठाक है, आप बताएं आप कैसे हैं। मुश्ताक अहमद कुंभर, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक जी, आप बताएं। माशाल्लाह प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा है, थैंक यू उसके लिए। और आदिल कहते हैं वो नहीं नहीं वो लड़की रोज ही आती है, वो लड़की कभी कभी घोसड़ू बन जाती है, वरना तो रोज आती है। शाहनु बलोच हमारे साथ मौजूद है, रतो देरों से आप हमारा शो सुन रहे हैं, खुश आमदीद। और रतो देरों से भाई याद आ गया हमारे साथ यहाँ पर नसरुल्लाह सुमरो भी ज्वाइन कर चुके हैं। कह रहे अस्सलाम वालेकुम बाबा, असां भी अची वयासी, को आहे जेको असां के सुञाणी सबको तव्हां खे सुञाणींदो आहे। अल्लाह कहते असांजो दिल हले थो, छो भलाइड़ो छा कयो अथव। अच्छा मोहम्मद आहिलुन भाई हमारे साथ मौजूद है, आपको भी खुश आमदीद कहा जाता है। और मुमताज अली आ चुके हैं, वालेकुम अस्सलाम, गुड आफ्टरनून चल रहा है। एहसन अरबानी हमें सुन रही है, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम मदद। कहते ओ माय फेवरेट आरजे मैडम मुस्कान, लाड़काना की पहचान में भी आ गया, तबीयत और मूड कैसा है, सब भी बहुत बढ़िया, आप बताएं। और हिदायतुल्लाह कैसे बैठे लिखा है सिद्रा, वैसे आज वो अदा आया है, हाँ जी नसरुल्लाह भाई आए हैं, वेलकम कहा जाता है उनको। और पता नहीं इतने कहाँ बिजी हैं कि वो प्रोग्राम में आना ही छोड़ चुके हैं। चलें जी, जो जो लोग ऐसे हैं जो प्रोग्राम में नहीं आते उनको बोलें भाई आया करें प्रोग्राम में, आप लोगों का प्रोग्राम है। और व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में भी जानिए, ताकि आप लोगों को पता चले कि आप खूबसूरत कैसे हो सकते हैं। तो व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में आप लोगों को बताती हूँ। रुको जरा सबर करो, वापस तो आने दो मुझे, टाइम हो जाता है जरा, यहाँ पर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जाने जाते हैं, उसके बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास। तो सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग। व्हाइट एश एंड डी स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लगाइए ताकि आप भी खूबसूरत हो जाए।

0: GA FM 88.
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
2: अब आपकी खूबसूरती का फैन, वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: Aloe Vera Fan White H Beauty Cream 5-Day Beauty Plan के साथ Aloe Vera Vitamins और Avocado की भरपूर खूबियाँ जिसके Minerals Skin में fully absorb हो जाएं, Skin को Fair और Fresh बनाएं, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा White H Beauty Soap से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ White H Beauty Cream Glowing Skin का राज A Product of Biocon International Pakistan
1: Zindagi Guzario Etmad sa Quran ke samji budhanda raho Dr Farhat Hashmi jo program Taleemul Quran rozano subuh 9 lagi 5 minutan te sirf GFM 88 network te

मिल रहे हैं, जैसे कि व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम है, व्हाइटिश लवली क्रीम है, डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब है, व्हाइटिश ब्यूटी सोप है, व्हाइटिश फेस वॉश है, उसके अलावा व्हाइटिश हेयर रिमूवल लोशंस हैं, जो कि तीन मुख्तलिफ फ्लेवर्स के अंदर आप लोगों को मिल रहे हैं। उसके अलावा अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये तमाम प्रोडक्ट्स हम इस्तेमाल करें तो हमारी स्किन के मुताबिक है या नहीं, तो बिल्कुल आप लोगों की स्किन के मुताबिक है। और जो लोग ये सोचते हैं कि भाई हम अगर नाइट क्रीम में नहीं लगाएंगे तो हमारी स्किन जो है वो ठीक ठाक रहेगी, तो मैं आप लोगों को बताती चलूं कि जब आप नाइट क्रीमें लगाना स्टार्ट करते हैं, जैसे आप लोगों की उम्र थोड़ी उस एज में आ जाती है ना कि जिसमें आप लोगों को नाइट क्रीमें लगाने की नीड हो जाती है, तो आप बिल्कुल व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। और व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से आप लोगों की खूबसूरती बढ़ती है जनाब, क्योंकि व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम जो है आपकी जिल्द की खूबसूरती और निखार के लिए एक बेहतरीन ब्यूटी क्रीम है। ये जिल्द को नरम, मुलायम और तरोताजा बनाने में मदद देती है। इसके इस्तेमाल से आपके चेहरे की खुश्की हो, दाग धब्बे हो, बेरोनकी हो, ये सारी चीजें कम हो जाती है, जबकि आपकी जिल्द ज्यादा साफ और चमकदार महसूस होना स्टार्ट हो जाती है। तो व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम में शामिल खास अज्जा जो कि जिल्द की हिफाजत करते हैं और कुदरती खूबसूरती को उजागर भी करते हैं। बिल्कुल आप जानते हैं कि व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम के अंदर आपको एवोकाडो मिल रहा है, मिल्क है जनाब, एलोवेरा है, ये तमाम चीजें आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। बिल्कुल आप व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। मर्ज अतराज को खवातीन है, हर कोई इस्तेमाल करेंगे जनाब, हर किसी की स्किन के मुताबिक ही तैयार की गई है। और व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम के साथ आपको व्हाइटिश का ब्यूटी सोप भी मिल रहा है और व्हाइटिश का फेस वॉश भी मिल रहा है। तो चाहे आप साबुन इस्तेमाल करें या फिर फेस वॉश इस्तेमाल करें, ये दोनों चीजें आप लोगों की स्किन के मुताबिक तैयार की गई है। तो व्हाइटिश का जो सोप है ना, वो एलोवेरा, एवोकाडो और मिल्क से तैयार किया गया है। बाकी अगर हम व्हाइटिश के फेस वॉश की बात करते हैं तो व्हाइटिश का जो फेस वॉश है ये स्पेशली विटामिन सी से तैयार किया गया है। तो व्हाइटिश का जो फेस वॉश है विटामिन सी के साथ और विटामिन ए के साथ इसे तैयार किया गया है, जो कि आपकी स्किन को ब्राइट बनाता है एंटी एजिंग के लिए। इसे आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि अगर आपकी स्किन के अंदर विटामिन सी की कमी है तो वो पूरी हो सकती है और आपका जो फेस है ना वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ज्यादा खूबसूरत और बहुत ज्यादा ग्लोइंग हो जाएगा। तो व्हाइटिश का फेस वॉश लगाना चाहते तो बिल्कुल लगाइए जनाब। और उसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें व्हाइटिश लवली क्रीम की, तो ये जो व्हाइटिश की लवली क्रीम है ना, ये तो मेरी बहुत ज्यादा फेवरेट प्रोडक्ट है। अगर इसकी जानब आते हैं तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाइटिश लवली क्रीम जो है ये जनाब एक फेयरनेस फार्मूला है, जिसे वो लोग इस्तेमाल करेंगे जो कि ये सोचते हैं कि भाई इस गर्मियों के मौसम में मेकअप कौन लगाए, भाई हमसे मेकअप नहीं लगाया जाता, आप कोई जॉब करते हैं, कोई काम करते हैं, आपने कहीं जाना है, सुबह स्कूल जाते हैं या फिर आप पढ़ने जाते हैं, पढ़ाने जाते हैं, किसी भी लेवल पर आप लोग हैं, तो आपने व्हाइटिश लवली क्रीम का इस्तेमाल करना है। और व्हाइटिश लवली क्रीम जब आप इस्तेमाल करना स्टार्ट करते हैं तो व्हाइटिश लवली क्रीम से आप लोगों को बहुत सारे फायदे मिलते हैं। एक तो ये कि भाई आप लोगों के चेहरे पर खूबसूरती वाजे हो जाती है, दूसरा ये कि आपके चेहरे पर जो ये आपको ऐसा लगता है ना कि हम बाहर जाते हैं, बाहर कामों से निकलते हैं, तो आपकी स्किन जो है वो थोड़ी सी डल हो जाती है, चेहरे पर ये जो सूरज के खतरनाक असरात आ जाते हैं तो वो भी आप लोगों के कंट्रोल हो जाएंगे, क्योंकि व्हाइटिश लवली क्रीम के अंदर विटामिंस के साथ साथ जो है ना इसके अंदर सनस्क्रीन भी ऐड की गई है, जो कि आप लोगों की स्किन की हिफाजत करने के लिए है। तो व्हाइटिश लवली क्रीम आप लाजमी लगा के देखिएगा। मैं तो ये सोच रही हूँ कि आपके घर में जितने भी अफराद हैं वो सारे लोग ही व्हाइटिश लवली क्रीम का यूज कर सकते हैं, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, मर्द हो, खवातीन हो, आप सारे लोग व्हाइटिश लवली क्रीम का इस्तेमाल कीजिए और अपनी खूबसूरती को जरा मुकम्मल कीजिए। और व्हाइटिश लवली क्रीम हो या फिर व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम हो, इन दोनों को इस्तेमाल करने के क्या तरीकेकार हैं तो वो अगर आप लोगों को बताया जाए, तो व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम जो है ये नाइट क्रीम है, तो इसे आप रात के टाइम इस्तेमाल करेंगे। बाकी अगर हम व्हाइटिश लवली क्रीम का इस्तेमाल आप लोगों को बताएं तो ये एक फेयरनेस क्रीम है, तो इसे आप दिन में कभी भी लगा सकते हैं, रात में लगाएं, सुबह को लगाएं, जब दिल करे तब लगाएं, बस आपने अपना फेस वॉश करना होता है, अच्छे से फेस वॉश कीजिए, उसके बाद व्हाइटिश लवली क्रीम अपने चेहरे पर अप्लाई कीजिए और इस तरह लगाएं भाई, बस आप ऐसे लगाएंगे जैसे आप कोई भी फेयरनेस क्रीम लगाते हैं। तो फेयरनेस फार्मूला जो है ना, आपने बहुत सारे फेयरनेस फार्मूले लगा के देखे होंगे, लेकिन जब आप व्हाइटिश लवली क्रीम का यूज करेंगे ना तो आप भूल जाएंगे बाकी सारी क्रीमों को। तो व्हाइटिश लवली क्रीम का इस्तेमाल लाजमी करके देखिएगा भाई, हमारे घर में भी यूज होती है, आप सब इस्तेमाल कर सकते हैं, लाजमी इस्तेमाल कीजिए।
बहुत अच्छी चीज है, बहुत कमाल की चीज है. और ऐसे ही बिल्कुल जी व्हाइट एज का जो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्ने ट्यूब है उसके बारे में भी बताते हैं, लेकिन साथ साथ आप लोगों के लिए गाने भी लगाते जाएंगे हम, गाने भी साथ साथ सुनते जाएंगे, बातें भी करेंगे आप लोगों के साथ. और हाँ, अगर टॉपिक की बात की जाए तो मैंने आज आप लोगों से सवाल पूछा है. सवाल बिल्कुल ये पूछा है कि आप मुझे बताएं, अगर हंसने पर पैसे मिलते, हंसने से पैसे मिलते, तो आप कितना कमाते?

हां जी रुल्ली व्यासी बाबा हाणे तव्हां सोचींदा हूंदा अचण सां निगत खे छो हलायो अथई मुंहिंजी मर्ज़ी ये जो पहला मतलब ऐसे समझ लीजिए जो दूसरा लिंक होता है ना ये मेरी मर्जी के गानों का होता है ये मेरा फेवरेट लिंक है समझ रहे हैं बाकी में तो आप लोगों के पसंद के गाने सुनते ना कुछ ऐसे होते हैं जो पसंद आते हैं कुछ नहीं आते पसंद लेकिन हमें लगाने पड़ते हैं तो बस वही बात है तो यहाँ पर आप हमारे साथ मौजूद हैं जी प्रोग्राम की पोस्ट को जरा लाइक और शेयर कीजिएगा और उसके अलावा अगर देखा जाए तो कौन कौन हमारे साथ हैं जी इमरान खान रुख हमारे साथ ही वालेकुम अस्सलाम और वेलकम कहा जाता है चाचा खालिद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मेरे लफ्जों से मात मुमकिन ना थी ओके ओके सो उसने मेरे जज्बों से वार किया वाह वाह वाह वाह सही समझी यासी कहते मेरी तो उसने हंसी बंद कर दी है पैसे कैसे कमाऊंगा योर टॉपिक आंसर अच्छा किसने बताएं जल्दी अच्छा अखलाक भाई कहते हैं टॉपिक का आंसर फिर ब्रज खलीफा मेरा होता बाबा अच्छा ये हमारी साथ हैप्पी गर्ल कहती आरजे आपके सवाल का जवाब है अगर हंसने पर पैसे मिलते तो पहले आप पैसे लेती क्योंकि आप बहुत हंसती हैं माशाल्लाह आपको सलामत रखे जी वो तो मैंने आते ही बोला कि मैं खरबपति होती आप अपना बताएं आप कितना कमाते हिदायतुल्लाह कहते हैं वैसे हंसाने वाले तुम होगी तो बहुत वरना जीरो कमाते टॉपिक आंसर ऐसा मतलब आप बिल्कुल कम हंसते हैं ऐसा क्यों अच्छा मोहम्मद सलमान कहते हैं नाइस टॉपिक आपकी अमाउंट को हमारे साथ अच्छा सोच ले कहीं ऐसा हो ही ना जाए अच्छा पैसे तो इतने ज्यादा कमा लेंगे लेकिन फिर ये बताएं कि वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाते या फिर नहीं क्योंकि असल बात ये आ जाती है कि आप थोड़ी सी कंजूस हैं आप लेते नहीं है वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स तो लिया करें वैसे जब हंसने पर पैसे मिलते तब तो आपको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती तो मुझे यकीन है कि आप बांटते वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट है ना बिल्कुल जी

हाउ सही वाह जो गानो आ उनका अलावा अब्दुल गफार भाई हमारे साथ खुश आमदीद कहते हैं प्यारे भाई जान को और हाफिज यूनिस बाबर हमें सुन रहे हैं वालेकुम अस्सलाम अली अकबर बिरोही भाई आपको भी खुश आमदीद आपका गाना लगाते हैं जी नसरुल्लाह भाई कहते हैं हल असान जा अन्या ताई फेन आहे न मां समझो हाणी असान के विसारे छड्यो हुंद न बाबा भुला आया तवां जी अच्छा उनका अलावा किशोर भाई कहते हाय हेलो स्मार्ट हाजिर है आपकी बातों में आने के लिए ये बढ़िया था भीड़ू अच्छा उनका अलावा क्या कहते हैं टॉपिक जितना आप अमीर होती उससे थोड़ा सा कम मैं भी होता यू नो यस यस आई नो मेरे भाई हैं तो मेरे पास में ही शायद आपका भी बंगला होता है ना

हाउ बाबा दिल चे थी तुजो नालो मा सुकून रखी सडा पोस्ट के लाइक एंड शेयर कयो बाबा कंजूसियो छाजू आ नीते भी कंजूसियो नथा मडो न माना ओके जी वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स आए नहीं वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स अगर तुम इस्तेमाल कयो पया तो बुधायो केड़ो प्रोडक्ट आए जेको तुम के इंप्रेस करी चुका है केड़ो प्रोडक्ट आए जेको तुम इस्तेमाल कयो पया सो वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में तुम्हारे लिए वाइटिश ब्यूटी क्रीम आ जेका तुम जानो था बाबा नाइट क्रीम आए तुम इस्तेमाल कना तो तुम के वाह जी खूबसूरती मिलंदी आई वाइटिश लवली क्रीम के बारे में भी तुम्हें खबर आ ये फेयरनेस क्रीम आई इनके तुम इस्तेमाल कना मतलब मेकअप के तौर पर भी कर सको था वैसे भी अगर तुम कोई फेयरनेस क्रीम में सुठी न लगंदी आ सूट नथी करे तो तुम वाइटिश लवली क्रीम जो ट्राई करो बाबा ऐसी डॉक्टर पिंपल एंटी एग्नी ट्यूब की तरफ अचू था

वाले डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जो है उन्हें मानन जले आहे जिनजे चेहरे ते एक्नी हुंदा है एक्नी जो खात्मो करण चाहियो था तो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जो इस्तेमाल करो एंड डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जो है ही बाबा मेडिकेटेड ट्यूब है इनके फुल जड़ी बूटन से तैयार कयो वयो है इन में वे सब चीजों एड है जो तवाजे एक्नी जो कंट्रोल करे सगन न सिर्फ तवाजे चेहरे जा एक्नी कंट्रोल थी बल्कि तवाजे चेहरे ते एक्स्ट्रा ऑयल है ब्लैक हेड्स आहन ब्लैक पोर्ट्स आहन व्हाइट हेड्स आहन एक्स्ट्रा ऑयल हो या एक्नी केड़ी भी टाइप जो हो छो तो एक्नी भी किस्म जहाँ हूँ सो कड़े भी किस्म जो एक्नी है वो बिल्कुल खत्म थी डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब लगाइंदा अथ एक्नी से गडोगर तुम्हारे चेहरे जहाँ एक्नी जहाँ निशान होजन कोई सड़न जो निशान है कोई कट जो निशान है केतरा भी निशान होजन कड़ा भी जिद्दी नंढपण में को धक लगो हो फेस से मौजूद है उन्होंने निशान तो वो भी रिमूव थी सके तो जैसे तुम डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जो यूज करा डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जो है तुम दिल खोले लगा सको इनके अंदर कोई भी केमिकल एड ना सेंसिटिव स्किन वारा माण्हू भी लगाए सकन था जिते जिते एक्निया जिते जिते निशाना उते उते लगाए जो पूरे फेस ते ना लगाणो लगाने का तरीकेकार बिल्कुल ही आता तुम सब का पे फेस वॉश कर ईंदा चाहे तुम व्हाइटिश ब्यूटी सोप लगाओ या व्हाइटिश जो फेस वॉश लगाओ पाँच अच्छे तरीके से मुंह धोई अचो सही उनका हथ भी चंगे तरीके से क्लीन हुजन तवाजा जिते जिते एक्निया जिते जिते निशाना उते उते तुम डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब लगाणो है तुम डी जो भी लगाओ यानी कि सुबह जो भी लगाओ रात जो भी लगाओ अगर एक्नी सफा घना सफा घना तो उ टे चक्कर लगाए सकता यानी कि मंझन जो भी लगाए सको था बाकी अगर एक्नी नॉर्मल आए निशान आ उनके रिमूव करन चाहे था तो तुम ब मरतबा लगाओ ठीक है सुबह इन शाम जो अच्छा चाहता जो दिल खोले या डबो खोले हाँ डबो खोले टेक्निकल तो यही थी सके तो बाकी कुछ मानू थोड़ा दिल जा कमजोर हुंदा है ना वो ये सोचिंदा है बाबा सा लगायो या न लगायो ये न लगाने वाला जे के मानू ने डाढा आला किना दव हाँ तो अड़ा प्रोडक्ट अची वे तूबसूरती लाइन बाबा खूबसूरती की हिफाजत भी करना तो उन्होंने फायदो हासिल करो है व्हाइटेज का प्रोडक्ट इस्तेमाल करना पड़ता सो लास्ट में ट्राई करो तुम्हारी खूबसूरती न मिले तो पोजो

हाओ बाबा वाजु गानो हुयो ऐं कुझु माण्हुनि जो नालो जेको आहे सुकून त ठहंदो आहे पर कुझु माण्हुनि जो नालो वरी सम्झी विया हूंदा. सो ही वारो गानो असां ॿुधंदासीं. सेविश जी आवाज़ में ही सॉन्ग आहे ॾाढो वीआईपी गानो आहे. तव्हांखे पसंदि ईंदो न अचे त पैसा वापसि कंदासीं. मोहसिन अली हमारे साथ मौजूद. वालेकुम अस्सलाम. कहते हैं मोहसिन अली बिरोही एंड मोहसिन अली मोहसिन अहमद बिरोही एंड मोहसिन अली बिरोही दोनों हमारे साथ है. मीरो खान चौक लाड़काना से आपको खुश आमदीद कहा जाता है. और ये हमारे साथ भाईजान कहते हैं अदा मुखे कल शाम फील थियो कंहिंजो गानो न हलंदो आहे त कावड़ छो कंदा आहिनि. इहो फील थियो या बस इहो त हुननि खां पुछंदासीं जेके कावड़जी वेंदा आहिनि. सम्झो था अली मुर्तज़ा खे थी सलाम एंड गुड आफ्टरनून. आई एम हेयर टू पघर में यूनिवर्सिटी जी लाइब्रेरी में विदाउट बिजली बिजली बिजली बाजी ने आपकी तरह मेरा मुंह बनाया हुआ है. अरे भाई मैंने कल आपका गाना लगाया तो था नहीं सुनाता था. वैसे बिजली जी बाहे मोमा न कटजो.

ओके जी, अब्दुल रजाक भाई आपको भी वेलकम हो गया. थैंक यू हिदायतुल्लाह, आपको भी वेलकम हो गया. अखलाक भाई आप हंस रहे हैं. हंसी है जी, हंसी है. क्या पता बहुत ज्यादा आपके पैसे बन जाए. हैप्पी गर्ल, आपका बहुत शुक्रिया. थैंक यू. ये भाई कहते हैं अदा आप सच कहते हैं, इंसान को अपनी स्किन की केयर करनी चाहिए. मुझी मैडम टे बारन जी माँ आ पर ॾिसण में 16 सालनि जी लॻे थी. बिल्कुल हो इहा ॻाल्हि माँ, इहा चई चई समझाए समझाए मूंखे मथे में सूर पइजी वेंदो आहे. पर तव्हां ॻाल्हि सम्झंदा न आहियो. अगरि तव्हांजी उमिरि बि वधंदी वञे थी ऐं तव्हांजी स्किन ते रिंकल अची विया आहिनि ऐं तव्हांजी अञा शादी बि कोन थी आहे, त ॾिसो केॾी वॾी ॻाल्हि आहे इहा. ऐं तव्हांखे बि वाइट एज जा प्रोडक्ट इस्तेमालु करणु घुरिजनि, जीअं तव्हां बि पंहिंजी उमिरि खां सफ़ा नंढड़ा लॻो, सफ़ा नंढा. हिकिड़ी नंढड़ी ते ॻाल्हि यादि अची वई, ॿुधायां थी मोटी जी, टाइम थी वियो न्यूज़ ब्रेक जो. सो तव्हां हिते वेठा हुजो, काॾे बि न वञो. अलाह कसम अथव मां हीअं वञी हीअं मोटां थी. सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग. वाइट एश एंड स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स. हणो जे तव्हां बि सुणा थियो बाबा.

0: It's 2 p.m. This time check is brought to you by
1: Fakiri Analgesic Cream. The
2: अब आप सुनेंगे जीएएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

धांधलिन जी मास्टर पीपल्स पार्टी धांधलिन जूं गालियूं करे रही आहे। बुधायो वञे त क़यामत कहिड़े वक़्त ईंदी। पंजाब जे वज़ीर आला मरियम नवाज़ जो बयान। पीपल्स पार्टी पंजाब अॻवान हसन मुर्तज़ा चयो आहे त आज़ाद कश्मीर में नून लीग धांधलीअ जा नवां मिसाल क़ाइमु कया। इलेक्शन कमीशन बि नवाज़ लीग जे एजेंट तौरु किरदार अदा कयो आहे।

में फायरिंग में रेंजर सहलकार शहीद ऐं 15 पुलिस सहलकार जख़्मी थिया आहिनि। पुलिस ऐं कानून लागू कंदड़ इदारनि शरपसंदनि खे गिरफ़्तार कयो आहे। सिंध जे वॾे वज़ीर सां अमेरिकी कारोबारी वफ़द जी मुलाक़ात। वॾे वज़ीर अमेरिकी सीड़पकारनि खे सिंध में तवानाई, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिहत, सिहत ऐं ज़राइत जे शोबनि में सीड़पकारीअ जी दावत ॾिनी। सैयद मुराद अली शाह चयो त सिंध हुकूमत सीड़पकारनि खे शफ़ाफ़, मुस्तहकम ऐं कारोबार दोस्त माहौल फराहम करण लाइ पुरअज़म आहे। पॉलिसियुनि जे तसलसल, रेगुलेटरी सहूलियतनि ऐं हर मुमकिन हुकूमती सहकार खे यकीनी बणायो वेंदो।

सखर हैदराबाद मोटरवे जा पैसा खाईंदड़नि जा पेरा मटियारी में मिलनि था। सिंधूअ में असांजो साह आहे। सिंधु दरिया हज़ारनि सालनि खां वहंदो रहियो आहे ऐं वहंदो रहंदो। भिटशाह में हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जे उर्स जो इफ़्तिताह करण बाद सिंध जे गवर्नर नियाल हाशमी चयो आहे त सखर हैदराबाद मोटरवे जी तामीर लाइ 6 अरब रूपया हड़प कंदड़ मटियारी जा ई आहिनि। सखर हैदराबाद मोटरवे जो कम हिन साल शुरू थींदो। भारत पाणीअ ते धाड़ो हयो त मुंह टोड़ जवाब ॾींदासीं। सिंध मां धाड़ेल राज नवाज शरीफ ख़तम कयो हो। शायरनि जे सरताज हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जे 283 उर्स जूं तकरीबूं शुरू थी वयूं आहिनि। सिंध जे गवर्नर नियाल हाशमी मज़ार ते चादर चाढ़े उर्स जो इफ़्तिताह कयो। सिक्योरिटीअ जा इंतज़ाम ताईं सख़्त कया विया आहिनि। मुल्क जे कुंड कुड़ मां पांधीड़नि जी आमद जारी आहे।

0: हैदराबाद में एसपीएससी जे इम्तिहान में हेरा फेरी ए पंहिंजा नवाज़ी खिलाफ़ छह ॾींहं बि एहतियात जारी। मुतासिर उमीदवारनि ऐं शागिर्दनि जे कमीशन आफ़िस आॾो लॻायल एहतियाती कैम्प ते सियासी समाजी अॻवाननि जी आमद बि जारी। अॻवाननि चयो त सिंध में मेरिट जो कतले आम थी रहियो आहे, नौजवान हाणे पोइते न हटंदा। दोदापुर वेझो घरू अणबण तां मुड़ुस ज़ाल खे क़तल करे छॾियो, जवाबदार फरार। ॻोठ जखराणी में जवाबदार यासीन जखराणी पंहिंजी ज़ाल नादिया ते पिस्टल जा।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300338569।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बार या दस्तियाब आई।
3: हाँ अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी।
4: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300320437202 0242460100।
5: माशाला फौजी पाइप फैक्ट्री नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेहरापुर। असां वटि जॻहि जूं ॾियारियूं, जॻहि जा पावा ऐं पाइप, ॾेढ ॿ चार छह नव ऐं 12 इंच में प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
6: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320180003।

0: It's 2:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।

अच्छा छा थो चई अदो अगर बियो नंबर भी याद न थे त बियो को ऑप्शन टियो नंबर भी आए पर वो कुछ दिन खा पोई ताके बुधाइंदो याद न कयो न बाबा ताके नोट करनो आ नंबर।

0: लजा दे। ओगरी मामा जमान भाई बिल्कुल आपका रिएक देख लिया, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया।
1: करना जाने राशा काशी,
0: इस्तेमाल कयो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कंदा त तव्हांखे ख़बर पवंदी त तव्हांखे ॾाढो ख़ूबसूरत थी विया आहियो। ऐं हुन खां अलावा अली अकबर बिरोही भाउ तव्हांजो मोहबतूं आहिनि प्रोग्राम ॿुधो पिया। वफ़ा शहज़ादो मक्सी हमारे साथ लाड़काना से आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू। ऐसन कहते हैं खिलण ते पैसा मिलन त पोए खिलण ते पाबंदी हुजे, हाँ छो जो माण्हू असां खे अमीर थियण ॾींदा, सोचो सभ खां पहिरियां साड़ोला माइट। वाकई वाकई इन ॻाल्हि में दमा बाबा, इहो त असां सोचो ई कोन हुयो। अजो मुमताज़ कहते हैं कि अदी सिद्रा लॻे थो तव्हां इहे क्रीमूं असां खे हणी भूरा करण चाहियो था, ऐं घर वारा असांजी शादी बिल्कुलु इहा ॻाल्हि आहे जॾहिं तव्हां भूरा थींदा पोइ तव्हांखे माण्हू सॼे रिश्ता ॾींदा। सो तव्हां बि कोशिश कयो त डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कयो, भूरा सफ़ाई बाहि थी वेंदा। सो लाज़मी तव्हां ट्राए करे ॾिसजो डी स्किन ब्यूटी क्रीम खे।

बाबा हाणे मोबाइल जो दौर आहे, हर कंहिंखे मोबाइल हथ में आहे, सो तव्हां पंहिंजे मोबाइल में लिखी सघो था इहो नंबर. बसि तव्हां लिखो नी, मतिलबु सेव कयो पाण वटि, उन्हनि खे कॉल कयो, मैसेज खे ॾिसो बाबा फलाणी जॻह ते तव्हांजी डी स्किन ब्यूटी क्रीम कोन थी मिले. मोहसिन लिखे थी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम जी. वालेकुम अस्सलाम. अली मुर्तज़ा लिखते हैं कि खुश कौन कमबख्त नहीं रहना चाहता, हंसना कौन नहीं चाहता, बट एज यूजुअल लोगों का बस चले हथौड़े मार दे क्योंकि हंसना मना है मेरे इर्द गिर्द. और यहाँ भी सही बात है वैसे. इधर तो खैर मुझे लगता है कि अभी थोड़ा माहौल ठंडा हो चुका है, लेकिन ये हम मतलब सोच ही सकते हैं कि कभी हमारा शो ऐसा हो कि एक भी नेगेटिव पर्सन ना हो, सारे लोग पॉजिटिव हो, तो कितना ना अच्छा रहेगा.

खाओ बाबा हथ हिको ही रखो हाँ एसन कहते हैं डी एस चवंदा आहिनि बिल्कुल बिल्कुल डी एस क्रीम डी एस क्रीम न आहे डी स्किन ब्यूटी क्रीम आहे ॾिसो मुंहिंजा लिसनर केॾा भला आहिनि सभु चीज़ूं नोट कंदा आहिनि अच्छा सो बिल्कुल तव्हां बि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कयो नालो सही तरीक़े सां वठो डी स्किन ब्यूटी क्रीम वञी तव्हां वठी सघो था पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर तां उन खां अलावा नथा मिलनि त पोइ तव्हां नंबर ते राबितो कंदा रहो सही आहे उन्हनि जो जीअण हराम कयो उन्हनि खे ॿुधायो बाबा असां लॻाइण चाहियूं था डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिले कोन थी पियो हिदायतुल्ला कहते हैं कि जो भूख रात को लगती है वो दिन में नहीं लगती और जो नींद सुबह के वक्त आती है वो रात को नहीं आती हाय मेरे निके निके दुख

हा वाकई मूंखे ही नंबर जेके ॿुधाया पई सिंधी में यादि कोन्हे. मां यकीन कंदा रोज कोशिश कंदा त तव्हांखे सिंधी ॿुधाईंदमि, पर ई लॻे थो थोरा मुश्किल आहिनि. अच्छा ॾिसो ॾिसो बाबा, तव्हां बि ॾिसो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कयो. ममताज़ भाउ कई अथई डी स्किन ब्यूटी क्रीम तमामु सुठी आहे, अॼु असां लाइ सॉन्ग हलायो फ़ाइज़ा अली. हाज़िर हाज़िर फ़ाइज़ा अली हलायूं था. अखलाक भाउ बिल्कुलु टियों नंबर बि आहे, उहो कुझु ॾींहंनि खां पोइ ॿुधाईंदव. ओके वासु भाई, आपको भी वेलकम कहा जाता है.

अॼुकल्ह वॾड़ा बि सही सलाह नथा ॾियनि कारी वञूं असां अॼुकल्ह वॾड़नि खे बि लाइ छा थी वियो असां चेंजिस खे कुझु सम्झे ई न आशिकली मला हमारे साथ फ्रॉम बकर अबड़ो सलाम जी वालेकुम अस्सलाम डेडिकेट कीजिए अली आजम अबड़ो गुलाम मुस्तफा अबड़ो और आजम अली बुगियो गाना तो आपने लिखा ही नहीं वेलकम कहा जाता है आपको और ये हमारे साथ हैं जी मोरोखा कामरान लगारी वालेकुम अस्सलाम सिस्टर आप कैसी हैं माशाल्लाह आपका शो बहुत अच्छा है अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे सिस्टर हमें सनम मारवी का सॉन्ग सुनाइएगा डेडिकेट इमरान लगारी और दरबन अली हमीर खान हक मौजूद जी सदम मौजूद खुश आमदीद कहा जाता है और जी हमारे साथ ही चाचा खाली तमाम गाने जी फरमाइश कई तमाम जो राशा का शगानो हली हुआ राशा का बस हाँ तुम टी स्किन ब्यूटी क्रीम हणे की तैयारी पकड़ो रसूलाबाद से आबिद सिंह चंबानी भाई वालेकुम अस्सलाम टॉपिक अदी पैसों की गिनती के लिए कोई और रख लेता मैं तो बस हंस हंस के पागल हो जाता सही गाल बाबा सही गाल अच्छा ये हमारे साथ है माँ भी करोड़पति हो जा हाँ मकसूद मलाह हमारे साथ है ओके जी मेहरापुर से मकसूद मलाह हमें सुन रहे हैं थैंक यू फिर खान लिगारी वालेकुम अस्सलाम सिस्टर तवा की आयो भामा सफा भलीता बुधा की आयो और ये हेलो आई एम जाकिर जख्मी बलोच फ्राम कोटड़ी कबीर जाकिर वरी जख्मी वरी बलोच भा खुश आयो नी और सजाद अली जमाली है नवाब शाह से सॉन्ग प्ले कीजिए मुमताज मोलाई पैसो डिठो थी हाजिर हाजिर हलायो था ये कहते वैसे तो पैसा कोई देता नहीं लेकिन मगर कोई 10 रुपए भी दे दे तो मैं सारा दिन हंसता रहूंगा शहबाज जमाली कर दी ना छोटी बात डर पता अजकल बार भी ना वेटन

0: वरी तव्हां बि हेॾे होॾे न फिरो बाबा डी स्किन ब्यूटी क्रीम वठूं ऐं सुहिणा सुहिणा थी वञो टाइम थियो आहे बाबा शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक वठूं था ओ हीअं वञी ओ हीअं मोटूं था सो स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय वाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हणो ऐं सुहिणा थियो
1: खबरी क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं अब फिक्र छोड़िए शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 03003385569
2: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिले तहसीन नताइज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 03000002734 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 03013865453
1: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी चमकदार

0: सिर्फ ॿिनि ॾींहनि में डार्क स्पॉट्स खे करे ख़तम ऐं ॾींहं कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर ॾींहं जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलस होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120
2: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा ख़मीस जुमे छंछर आचर ऐं सोम

0: पथरी, मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो। गुर्दन जो इन्फेक्शन, चेहरे जो रंग सांवरो, चेहरे जी खारिश, फट फुरड़ियों, बारन में कद जो न वधण, मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण, उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301-2196-851।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
1: न अदा।
3: यार अॼुकल्ह शहरन तोड़े गोठन में जीअं मीरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मीरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
1: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधायो।
3: ऑफिस जी मीरापुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मीरापुर।
2: राबते लाइ हाकिम अली जिस्कानी,
4: 03013992836।
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

ओके जी ओके ॾाढो भलो गानो ॿुधो सी ॿियो बि हिकिड़ो गानो ॿुधंदासीं पर तव्हांजा मैसेज आहिनि उन तरफ़ बि अचूं था ऐं पैनल ते शहबाज जमाली भाउ सां गॾु मौजूदु आहे तव्हांजो मोहबतूं आहिनि प्यारा भाउ प्रोग्राम खे इंजॉय कयो मायरा सां गॾु मौजूदु आहे मायरा तव्हां असांजो प्रोग्राम ॿुधो पिया थैंक यू वेरी वेरी मच और हमारी साथी जी फज़ीला सिंधी की असलाम वालेकुम जी वालेकुम असलाम गुड आफ्टरनून माय स्वीट बेस्ट आर्टिस्ट सिस्टर सिद्रा मुस्कान आप कैसी हैं सलाम टू माय स्वीट हार्ट मॉम एंड कायनात और सब स्वीट सिस्टर्स को टॉपिक कहती है कि मैं कम हंसती हूँ और रोती ज्यादा हूँ इसका मतलब आप गरीब होती और कहती प्यारी ये तो आपने करना है ना मेरे हिस्से का जो काम है वो तो मैं कर रही हूँ बाकी जो आपके हिस्से का काम है वो आपको करना पड़ेगा और कहती है मेरी अम्मी भी आपका शो सुन रही है और कहती है कि सिद्रा को सलाह अच्छा तो बोले अम्मी को मुझे सलाह दे माँ चवण वठंदी आहियां अला मां भली आहियां मां सुठी छोकिरी आहियां

அதில் கேள்வி கேள்வி காலி சவுந்து வா பாபா இன்ன லாய் சவுந்தாயின் த தில்ஜி காலந்தி தோரு கட்ட ஹலன் குர்ஜி और एम अंसारी कहते हैं मेरे सरकार का भी सलाम वालेकुम अस्सलाम जी वालेकुम अस्सलाम आदिल कहते हैं वाह सही वाह नाइस सॉन्ग थैंक यू डिस डिस डिस अच्छा मुमताज़ सॉन्ग की डीज़ किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करनी पड़ी बाबा इस्तेमाल कयो घर वारन के राजी करे उठंदासी तव्हां पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर ते हलिया वञो उन्हनि खां मालूमात वठो सही मिलनि नथा अच्छा वासु भाई थैंक यू तव्हां सां सिगरेट आयो चाचा खालिद खे थी उस्ताद हांजी मोटी आयो आहे मोटी खेर असां सां नंढड़ो भाउ प्यारो भाउ किशोर भाई हिते असां ख़ूबसूरत थी विया नायूं असां बचपन खां ख़ूबसूरत आहियूं तॾहिं त रोज़ डी पी चेंज कयूं था केरु करे त ॾेखारे रोज़ रोज़ इहा ॻाल्हि आहे मञण मुराद वारा हिकिड़ी छोकिरी आहे उहा बि रोज़ डी पी चेंज कंदी आहे सम्झी विया हूंदा ऐं छोकिरीअ जी नज़र नथी अचे अलाए किथे आहे

हैप्पी नहीं आज से मैं तो पॉजिटिव हूँ, बाकी दूसरों का पता नहीं। बिल्कुल जी, बस आप पॉजिटिव रहिए, दूसरों को हम देख लेंगे। और हमारे साथ हैं जी छा गए थे असम। यह गाल जेको है ना सो कहीं कहीं जे अंदर होंगी है, हमेशा तवां के पॉजिटिव रहनो है, नेगेटिव रहंदा तो पो खराब थी वेंदा। बासी तो सोना सोना थियो, पॉजिटिव थियो, आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कंदा रहो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम तवां के सफा सोनो बनाए छडी, तां मर्द आयो मायूं आयो सब लगायो।

0: मेरी पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए. अच्छा कुर्बान अली कमरानी भाई है विलेज. ओके जी, वालेकुम अस्सलाम कहते प्यारे भाई को.
1: तेरा कुड़ी
0: विलेज थोड़ा मुश्किल था. और ममताज भाई डे स्किन ब्यूटी क्रीम आप बिल्कुल इस्तेमाल कीजिए. और दीदार अली बिरोही हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी. सोचा आपका हाल ही पूछ लूं. दीदार बिरोही लाल शाह बड़ी से. दीदार मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताएं कैसे हैं.

बिल्कुल जी, री स्किन ब्यूटी क्रीम लगाएंगे तो आपका मुखड़ा भी बहुत ज्यादा खूबसूरत हो जाएगा. तो अपने मुखड़े का जरा ख्याल रखिए और री स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते रहिए. री स्किन ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल से ये तो फायदा आपको हो ही जाएगा कि री स्किन ब्यूटी क्रीम आप लोगों के चेहरे पर जो है ना, ये जितनी भी परेशानियां है, जितने भी मसले मसाले, वो सारे दूर हो जाएंगे. और ये मेडिकेटेड फार्मूला है, यानी कि डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर तैयार किया हुआ, तो आप बेफिक्र होकर लगा सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है. री स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको री स्किन फेस वॉश भी मिल रहा है, तो दोनों चीजें साथ में लगाइए ताकि आप लोगों को खूबसूरती मिले, वो भी मुकम्मल वाली.

हमारे दादू लोग कहते हैं वैसे आज सर्दी जैसी है लाड़काना में, कराची में तो वडो सी आए, लाड़काणी में भी थोड़ो थोड़ो सी नसरुल्ला भाई कहते हैं हाय अलाए केतरे डीएन खां पोई प्रोग्राम में उस्ताद जो गानो बुधो आ ता अच्छो त सही नी ताके रोज बुधराइंदा से दीदार कहते हैं टॉपिक का आंसर है हंसने पर पैसे मिलते तो एक रुपया भी नहीं कमाता क्योंकि हमारे यहाँ हंसना मना है। अरे भाई कहाँ रहते हैं, कौन से जमाने में रह रहे हैं। चलिए जी खुश रहा करें और हंसते मुस्कुराते रहा करें, अच्छी बात होती है।

बिल्कुल जी जानी तो घुर्जे पर डी स्किन प्यूरी क्रीम भी घुर्जे बाबा डी स्किन प्यूरी क्रीम के न विसार जो ये न कजो ये न कजो ये न कजो अल्लाह सही डो दी न अच्छा अच्छा तो चो किशोर भाई उदासी में दबजी वही हुंदी सही था चो वाला ये लड़की इतना उदास रहती ना कि मैं सोचती हूं को भाई एक इंसान इतना उदास कैसे रह सकता है अच्छा वासु भाई हाँ जी बिल्कुल वठूं था मोकल बाबा तकड़ शादी थव वे हो त हाँ नसरुल्ला भाई कहते हैं बाकी कुराड़ा है कुराड़ियों कारे वजन उए भी लगाए ना बिल्कुल बाबा सब लगाइंदा सबनी जिला डी स्किन ब्यूटी क्रीम आए कुराड़ा तो लाजमी लगाए ना जवान थी वेंदा

अच्छा मोदिया से थानी भाई वालेकुम अस्सलाम। हाले सुल्तान हमारे साथ, हेलो स्वीटी, वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद कहते हैं। हैप्पी, आपको भी वेलकम हो गया जी। अली चौथा अज मुखे न चे जांदा 5 बजे च जांदा त लाजमी अच जो। अच्छा नहीं, जिन लोगों के मैसेज नहीं पड़े ना तो वो ऊपर चले गए होंगे, तो आप समझ जाइएगा। डॉलर तो गुर्जे बाबा, फॉर्चूनर भी गुर्जे, जानी भी गुर्जे, जानी लास्ट में गुर्जे। पेड़ा सब कुछ अली मुर्तजा कहते हैं भुख लगे ना सही बुखार लई वेंदा सकी कता वैसे अमी भी ये चवंदी आ ना सही बुखार लई वेंदा सकी कता वैसे अमी भी ये चवंदी आ।

बिल्कुल जी बिल्कुल, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सब कुछ समझ जाऊँ, लेकिन वो क्या है ना कि मैं नन्हा मुन्ना राई हूँ, देश का सिपाही हूँ, तो कुछ चीजें मैं नहीं समझती। आज हाँ मैंने ये परंपरा को तोड़ दिया कि लास्ट सैडी लिंक में हम सैडी गाने सुनेंगे, आज ऐसा नहीं हुआ। आज हमने अच्छे अच्छे गाने सुने हैं, देखिए कितना मजा आया, लग ही नहीं रहा कि प्रोग्राम खत्म हो रहा है लेकिन खत्म हो चुका है। तो वरी तमाम से मिलूं था बाबा 5 बजे वाले प्रोग्राम में। तो बिल्कुल जी 5 बजे वाली प्रोग्राम में ज्वाइन कजो। आई उन का अलावा किते का गलती थी हुजे, किंके का गाल बुरी लगी हुजे, कि जो गानो रहजी वयो हुजे, त बाबा माजरत कयूं था। आई डी स्किन ब्यूटी क्रीम आई वाइटी सा प्रोडक्ट्स तमा लाजमी लगाए दजो। आई जी सुना सुना थियो, पाला पाला थियो, आई खूबसूरती तमा के काडे भी छड़े न वने, ठीक आ। सो 5 बजे ज्वाइन कजा, मोकलानी ना है। सलामत, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, लव।

0: It's 3 PM. This line check is brought to you by Fakiri Neem Prickly Heat Soap. Jildi allergy aur kharish ke liye mufeed hai. Fakiri Neem Prickly Heat Soap. Har acche store se naam lekar talab kijiye.
1: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN News.
2: Khoobsurti hai jo asal raaz. Sirf D Skin Beauty.
3: विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवांजी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ़ ॿिनि ॾींहनि में डार्क स्पॉट्स खे करे ख़तम ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर ॾींहं जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर
4: आवाज का जोश जज्बा नजर आ रहा है उनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए मोहब्बत नजर आ रहा है और मैं अशरफ खान साहब को बताना चाहता हूं कि आज से मेरा मुबारकबाद कबूल करे इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला 2 अगस्त को आपकी जीत तीर की जीत कश्मीर की जीत पक्की साथियों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख आपके सामने है आपका सामने हमारे 3 नस्लों का ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है हम 3 नस्लों से कश्मीर जिद्दोजहद आलमी सतह पर लड़ते आ रहे हैं और 3 नस्लों से पाकिस्तान की अंदर पाकिस्तान के अवाम के हकूक के जिद्दोजहद लड़ते आ रहे हैं उनके इंसानी हकूक के जिद्दोजहद लड़ते आ रहे हैं उनके जमहूरी हकूक के जिद्दोजहद लड़ते आ रहे हैं हमारे
1: आप सुन रहे थे

0: GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385699।

0: जॻह जा पावा ऐं पाइप ॾेढ ॿ चार छह नव ऐं ॿारहं इंच में प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़ररु कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमामु बहितर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320180003।

0: It's 3:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ड जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03003385 69।

खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं

0: कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज 100 सोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 03003385699।

में आई हुई जड़े हवा के खैरा।

ईरान आबन हरमुज जे इंतज़ाम बाबत इलाकाई निज़ाम जोड़ण वारी तजवीज़ रद्द करे छॾी। आबन हरमुज में टी धुर जी शमूलियत क़बूलण खां इनकार। ईरानी नायब परॾेही वज़ीर काज़िम ग़रीब आबादी चयो आहे त ओमान जे आबन हरमुज खे ॿिनि मुल्कनि में हिकु जेतिरो विरहण वारी तजवीज़ रद्द कई आहे। ईरान जे हदनि सामूंडी रस्तनि जी ज़िमेवारी तेहरान ऐं ओमान पंहिंजे सामूंडी हदनि जी ज़िमेवारी संभाले सघे थो। ओमान ईरान जो आबन हरमुज बाबति मनसूबो रद्द कयो त हरमुज बंद थी रहंदो। पाकिस्तान जे दौरे ते पहुतल कोयती परॾेही वज़ीर जे परॾेही आफ़िस सामद नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कोयती परॾेही वज़ीर जो आदर भाव कयो। परॾेही आफ़िस में परॾेही वज़ीर जे नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार सां मुलाक़ात। खिते जी सूरतयाल समेत ॿिनि तरफ़नि लाॻापन ते ॻाल्हियूं। खिते में जारी तकरार ॻाल्हियुनि ज़रिए हल करण ते ज़ोर भरियो। केपी के बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकन में सिक्योरिटी फोर्सिस की कार्रवाई 32 दहशतगर्द मारजी वया। एसपीआर मूजिब केपीके के जिले खैबर में ऑपरेशन दौरान 24 दहशतगर्द मारिया वया। बलूचिस्तान के इलाके नोशके में ऑपरेशन दौरान 8 दहशतगर्दन के जहनम भेड़ो कयो वयो। मारजी वयल दहशतगर्दन वटां हथियार ए बारूदी मवाद हथ कयो वयो। सदर आसिफ जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, घरू वजीर मोहसिन नकवी ए बेन पारां दहशतगर्दन खिलाफ़ कामयाब कार्रवाई।

0: ये थे फोर्सेस के भेटा पेश। आजाद कश्मीर के शहर रावलाकोट में पाबंदी मडल तंजीम फोर्सेस ए पुलिस से हमला, शहर के मिल्कियतन के भी नुकसान पहुंचाया। कें भी जथे के फोर्सेस ए पुलिस से हमलन की इजाजत नहीं दे सकते। आजाद कश्मीर के पुलिस तर्जमान है त पुर अमन तहरीक न पर हथियारबंदन जो जत्थो बणजी चुकी है। पुलिस ए फोर्सेस से हमला कर रहा है। जत्थन की फायरिंग में रेंजर सहलकार शहीद ए 15 पुलिस सहलकार जख्मी थे। पुलिस ए कानून लागू कदड़ इदार शरपसंद के गिरफ्तार किया है। सिंध के वे वजीर से अमेरिकी कारोबारी वफ्त की मुलाकात। वे वजीर अमेरिका सीड़पकार के सिंध में तवानाई टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर सियाहत सेहत ए जरात के शोबन में सीड़पकारी की दावत दिनी। सैद मुराद अली शाह सिंध हुकूमत सीड़पकार के शफाफ मुस्तकम ए कारोबार दोस्त माहौल फराहम करने पुरअजम है। पॉलिसिन के तसलसल रेगुलेटरी सहूलत ए हर मुमकिन हुकूमती सहकार के यकीनी बनाया वो।
1: जमीन होती है पहले उसको खरीदा जाता है, जिसकी जमीन होती है उसके बाद उसमें कॉन्ट्रैक्ट और टेंडर होता है और उसके बाद मोटरवे बनता है।
2: GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569।
4: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जैमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाए 0320180003।

0: अस्सलाम वालेकुम अदा।
1: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
0: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
1: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
0: न अदा?
2: यार आजी कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
0: मुझे दुकान जी बेड हरंदी?
1: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
0: अदा जल्दी कर, मुख्य मुझी एड्रेस तो बुधा।
2: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नर्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
1: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
3: 03013992836
2: आई मोहम्मद उमेर गोरी 03195817024।
4: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 03003385569। खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने, मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर सूमर।

0: पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज़ फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज़ हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल जो पर एतमाद ऐं मां अख़्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे।
2: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
1: न अदा?
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे।
1: मुजे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अमन मेमन 0301-380-8347।
4: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GA FM 94।

0: ज़िंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है सुनते रहो GFM 94

0: कया है बुधायो वने तो क्यामत केड़े वक्त ही थी पंजाब जी वजीर आला मरियम नवाजी पीपल्स पार्टी ते टोक नवाज शरीफ जी मरियम नवाज भी चोर दरवाजे का इक्तदार में आई है। मरियम नवाज जाली मैंडेट जरिए सीटू हासिल करे वजीर अला थी है। हाँ घणो थो नवाज लीग के धांधली कर नींदी सिंध के सीनियर वजीर शजील नाम अहमद जो मरियम नवाज के जवाब इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे मरियम नवाज तहां न पर फॉर्म 47 जो नशो गलाय रो है। क्यामत 2024 में आई हुई जडे अवां के खैराती मैंडेट दिनो वो नून लीग आजाद कश्मीर में भी धांधली जरिए इक्तदार माण चाहे थी। राजा परवेज अशरफ चूंड धांधलियों जो सिलसिलो हाँ बंद घुर्ज जायज शिकायतू हल थे घुर्जन असो मजाक उड़ा वो तो नतीजा भी निकरंदा। विचोबर में नई जंग की शुरुआत ऑयल रिफाइनरीज से हमलन बाद सऊदी अरब की अमेरिका से गड इराक में कार्रवाई ईरान के हामी ग्रुपन के थाकन के निशानो बनाया। सऊदी अरब की दिफा वाली वजारत है ऑयल रिफाइनरीज से हमलो कदर ग्रुप्स के निशानो बनाया है। मुल्की सलामती और खुद मुख्तारी से को भी ठा न थी। अमरीकी फौज पारा भी इराकी ग्रुप्स खिलाफ कार्रवाई की तस्दीक कई वही। इराकी विराक ग्रुप हमलन में 20 जणन के मारजन की तस्दीक कर छी। ईरान जा उर्दन में अमरीकी अड्डन से मिसाइल हमला उर्दन पारा 5 ईरानी मिसाइल नाकार पायण की दावा अमरीकी फौज पारा उर्दन में ईरानी हमलन की तस्दीक। अमरीकी फौज ईरानी हमलन की तस्दीक कदे है ईरान तरफा फायर कयल समूरा मिसाइल दिफाई निजाम रोकया है। ईरानी पासा इनकलाब है उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डे सेंट कॉम के मरकज के बैलिस्टिक मिसाइल से निशानो बनाया है। उर्दन है ईरान पारा फायर कियल 5 मिसाइल नाकारा बनाए व्या। ईरान अबना हुरमुस इंतजाम बाबत इलाकई निजाम जोड़ वाली तजवीज रद्द कर छी। अबना हुरमुस में टी धुर की शमूलियत कबूल का इनकार। ईरानी नायब परदेही वजीर कासिम गरीबाबादी है उमान के अबनाए हुरमुस के बिन मुल्क में एक जितो विराण वाली तजवीज रद्द कई है। ईरान के हदन सामुंडी रस्तन की जिम्मेवारी तेहरान उमान पेंजी सामुंडी हदन की जिम्मेवारी संभाले सके तो उमान ईरान जो अपना हुरमुस बाबत मनसूबो रद्द कर हुरमुस बंद ही रह। कुवैती परदेही वजीर शेख जरा अल हमद अल सबा के नायब वजीर आसम साकदार से मुलाकात बिन्ही मुल्क विच में व्यापार सीड़पकारी दिफाई सहकार वधाइण ते इतफाक। परदेही खाते पारा जारी कल बयान में चाहिए तो मुलाकात दौरान पाक कुवैत लागापन समेत बितरफी सहकार से गाल बिन्ही अखबार खत्े की सूरत हाल ए सिफारती कोशिशों को भी जायजो वरतो। कुवैती परदेही वजीर खत्े में अमन के क्याम लाए पाकिस्तान की कोशिशों की सराह कई। खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाक में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई 32 दहशतगर्द मारजी व्या। ISPR मूजिब खैबर पख्तूनख्वा के जिले खैबर में ऑपरेशन दौरान 24 दहशतगर्द मारिया व्या। बलोचिस्तान के इलाके नौशकी में ऑपरेशन दौरान 8 दहशतगर्दन के जहनुम भेड़ो किया वो मारजी वाल दहशतगर्दन वटा हथियार और बारूदी मवाद हथ किया वो। सदर आसिफ अली जरदारी वजीर आजम शहबाज शरीफ गरू वजीर मोहसिन नकवी और बेन पारा दहशतगर्दन खिलाफ कामयाब कार्रवाई से फोर्सेज के भेटा पेश। आजाद कश्मीर के शहर रावला कोट पे पाबंदी मड़ियल तंजीम फोर्सेज और पुलिस से हमला किया शहरियन की मिल्कियतन के भी नुकसान पहुंचा कें भी जत्थे के फोर्सेज और पुलिस से हमलन की इजाजत नई सकजे। आजाद कश्मीर के पुलिस तर्जुमान ही पुरमन तहरीक न पर हथियार बंदन जो जत्थो बणजी चुकी है। पुलिस और फोर्सेज से हमला कर रहा है जत्थन की फायरिंग में रेंजर्स अहलकार शहीद और 15 पुलिस अहलकार जख्मी थे हैं। पुलिस और कानून लागू कंदर इदारन शर पसंद के गिरफ्तार किया है। सिंध के वे वजीर से अमरीकी कारोबार अफसर की मुलाकात वे वजीर अमरीकी सीड़पकारन के सिंध में तवानाई टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर सियाहत सेहत और ज़रात के शोबन में सीड़पकारी की दावत दिनी। मुराद अली शाह चाहे सिंध हुकूमत सीड़पकारन के शफाफ मुस्तहकम और कारोबार दोस्त माहौल फराहम करने लाए पुरअज़म है।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़। माशाला फौजी पाइप फैक्ट्री नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर असा जगह जो जारियो जगह जा पावा पाइप दे 4 6

0: मुतले इन कॉलम में मौजूद आहिन फौजी भाईरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-41-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम महरापुर होंडा मोटरसाइकिल जोधपुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम महरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPMG एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड महरापुर राब्ते जे लाइ 0302018-00003
2: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर शानदार तालीमी इमारत प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला सरसब्ज बागीचा बेहतरीन फर्नीचर शानदार कंप्यूटर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नताइज खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले स्टडी टूर्स अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम 03-00-00-27-234 निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 03-01-38-65-453
3: मेहरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई
3: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
4: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03-00-32-04-372 आई 02-42-46-01-00
5: अस्सलाम वालेकुम अदा
6: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
5: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
6: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
5: न अदा
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
5: मुझे दुकान जी बेड हरंदी
6: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
5: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
6: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
7: 03-01-399-2836
8: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज GA FM 94

0: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एटमाट, अइम्बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट दे दस्तियाब है, सर्विस सेंटर, एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है, होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स, खुसूसी रियायत ते मौजूद, आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो, कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर, फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट, कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी, होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जेर निगरानी, आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ते जिला आसिम हुसैन आराई, 0307-3592120।
1: अवां जी स्किन डल ए बेरोनक लगे थी, हाने पहिजी स्किन के दियो एक नओ गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश, सॉफ्ट ए ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक, रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट, हाने थियो खूबसूरत थियन वधिक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी, बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड। वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: वठणी पवंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज़ फॉलिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज़ हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दनि जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 03003385 69

त कश्मीर खे सिंध बणाए छॾियो पर मां कश्मीर खे कश्मीरी ॾिसण चाहियां थो। कश्मीर जो फ़ैसिलो इस्लामाबाद पंजाब सिंध ख़ैबर पख़्तूनख़्वा या बलूचिस्तान न पर कश्मीरी पाण ई कंदा। कश्मीर जो फ़ैसिलो मुज़फ़्फ़राबाद मीरपुर रावलाकोट ऐं पूंछ खे करणो आहे।

धांधलियुनि जी माहिर पीपल्स पार्टी धांधलियुनि जूं ॻाल्हियूं करे रही आहे। ॿुधायो वञे त क़यामत कहिड़े वक़्तु ईंदी। पंजाब जी वज़ीर आला मरियम नवाज़ जी पीपल्स पार्टी ते टोक। नवाज शरीफ जी मरियम नवाज भी चोर दरवाजे का इक़्तदार में आई है। मरियम नवाज जाली मैंडेट जरिए सीटू हासिल कर वजीर अला थी है। हाने घणो थियो, नवाज लीग के धांधली कर न ॾींदासीं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील नाम अहमद जो मरियम नवाज के जवाब। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कदे मरियम नवाज तहां न पर फॉर्म 47 जो नशो गलाए रो है। क़यामत 2024 में आई हुई जडे अवां के खैराती मैंडेट दिनो वो। नून लीग आजाद कश्मीर में भी धांधली जरिए इक़्तदार माण चाहे थी। राजा परवेज़ शफ चयो त चूंड धांधलियुनि जो सिलसिलो हाणे बंदि थियणु घुर्जे, जाइ शिकायतूं हल थियणु घुर्जनि, असांजो मज़ाक उॾाए वेंदो त नतीजा बि निकिरंदा। विचोभर में नई जंग जी शुरूआत। आयल रिफाइनरीज ते हमलनि बाद सऊदी अरब जे अमरीका सां गॾु इराक में कार्रवाई। ईरान जी हामी ग्रुपनि जे ताक़त खे निशानो बणायो। सऊदी अरब जे दिफ़ा वारी वज़ारत चयो आहे त आयल रिफाइनरीज ते हमिलो कंदड़ ग्रुप्स खे निशानो बणायो आहे। मुल्की सलामती ऐं ख़ुदमुख़्तारी ते को बि ठाह न थींदो। अमरीकी फ़ौज पारां बि इराकी ग्रुप्स ख़िलाफ़ कार्रवाई जी तस्दीक कई वई। इराकी विराक ग्रुप हमलनि में 20 ॼणनि जे मारजण जी तस्दीक करे छॾी। ईरान जा उर्दन में अमरीकी अॾनि ते मिज़ाइल हमला। उर्दन पारां 5 ईरानी मिज़ाइल नाकारा बणण जी दावा। अमरीकी फ़ौज पारां उर्दन में ईरानी हमलनि जी तस्दीक। अमरीकी फ़ौज ईरानी हमलनि जी तस्दीक कंदे चयो आहे त ईरान तरफ़ां फायर कयल समूरा मिज़ाइल दिफ़ाई निज़ाम रोकिया आहिनि। ईरानी पासा इनकलाब चयो आहे त उर्दन में अमरीकी फ़ौजी अॾे ऐं सेंट काम जे मर्कज़ खे बैलिस्टिक मिज़ाइल सां निशानो बणायो आहे। उर्दन चयो आहे त ईरान पारां फायर कयल 5 मिज़ाइल नाकारा बणाया विया। काज़िम ग़रीब आबादी चयो आहे त उमान जे अपनाए हुरमुस खे ॿिनि मुल्कनि में हिकु जेतिरो विराइण वारी तजवीज़ रद्द कई आहे। ईरान जे हदनि सामूंडी रस्तनि जी ज़िमेवारी तेहरान ऐं उमान पंहिंजे सामूंडी हदनि जी ज़िमेवारी संभाले सघे थो। उमान ईरान जो अपनाए हुरमुस बाबति मनसूबो रद्द कयो त हुरमुस बंदि ई रहंदो। कुवैती परॾेही वज़ीर शेख जराह अल अहमद अल सबाह जी नायब वज़ीर आज़म साहिबदार सां मुलाकात। ॿिन्ही मुल्कनि विच में वापार, सीड़पकारी ऐं दिफ़ाई सहकार वधाइण ते इतफ़ाक़। परॾेही खाते पारां जारी कयल बयान में चयो वियो आहे त मुलाकात दौरान पाक कुवैत लाॻापनि समेत वितरफ़ी सहकार ते ॻाल्हियूं कयूं वयूं। ॿिन्ही अॻवाननि ख़िते जी सूरतहाल ऐं सिफ़ारती कोशिशुनि जो बि जाइज़ो वरितो। कुवैती परॾेही वज़ीर ख़िते में अमन जे क़याम लाइ पाकिस्तान जी कोशिशुनि जी साराह कई।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जोधपुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाइ 03201800।

0: कॉलम में मौजूद आहिनि फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
2: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियर दस्तियाब आहिनि।
1: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी।
2: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-3204-372 ऐं 0242-460100।

0: सिंध पढ़ाए छो पर मां कश्मीर के कश्मीर ही दिसन चाहें तो कश्मीर जो फैसलो इस्लामाबाद पंजाब सिंध खैबर पख्तूनख्वा या बलोचिस्तान नफर कश्मीरी पानी कंदा कश्मीर जो फैसलो मुजफ्फराबाद मीरपुर रावलाकोट ए पूंछ के करणो है। धांधलियन के बाहर पीपल्स पार्टी धांधलियन जो गालू कर रही है बुधा वे क्यामत कड़े वक्त पंजाब की वजीर आला मरियम नवाज की पीपल्स पार्टी से टोक
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज
2: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
3: इरशाद ऑटोस होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जैमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाए 0320180003
2: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300338569

कालम में मौजूद आहिन फौजी भाईरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।

0: It's 7:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 03003385 69।

पर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंज़ूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमबी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाब शाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाब शाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभिनी बीमारियुन जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाइ 0301-9196-851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ। बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नाइन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाइ 0320180003।

0: सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।
1: छुट्टी के मौके ते वेजो साथ दिनो है पाकिस्तान खत्ते में अमन लाए दयानतदार ए मुखलिस त्याकर तौर किरदार अदा करे रहयो है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो चवण आए ता पाकिस्तान कुवैत सा पेंजी तामीरी लागापन के इंतहाई अहमियत दे तो पाकिस्तान ए कुवैत जो इलाकाई अमन ए खुशहाली लाए गडल मौकिफ है। अमरीकी सदर एक भेरों बीहर ईरान से वन हमलन जो ऐलान कर छो। डोनाल्ड ट्रंप है तो उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डे से हमले के जवाब में ईरान से शदीद हमलों किया वो। अमरीकी फौज वट ओचतो हमले जो जवाब देने लाए रुगो कुछ मिनटन जो वक्त हो। ईरान जो अड़ो हशर किया वो जो याद रख परे खबरू इदारे फॉक्स न्यूज से गालाइंदे डोनाल्ड ट्रंप है तो ईरान के हामी वड़ाकन खिलाफ भी कार्रवाई जो जायजो वरतो पो वे। इराक में ईरानी प्रॉक्सीज दुनिया लाए नासूर बनल आन उन खिलाफ वधिक हमलन ते भी गौर कयो पो वे।
2: अगर कोई आज वजीर आला का कुर्सी कोई संभाल रही है

0: बिलावल भुट्टो सरदारी चयो त ही मुज़फ़्फ़राबाद आहे श्रीनगर न अवां खे धांधली करण ॾींदासीं हीअ चवनि था त कश्मीर खे पंजाब बणाए छॾींदासीं तानो ॾियनि था त कश्मीर खे सिंध बणाए छॾियो पर मां कश्मीर खे कश्मीर ई ॾिसणु चाहियां थो कश्मीर जो फ़ैसिलो इस्लामाबाद पंजाब सिंध ख़ैबर पख़्तूनख़्वा या बलोचिस्तान न पर कश्मीरी पाण ई कंदा कश्मीर जो फ़ैसिलो मुज़फ़्फ़राबाद वीरपुर रावलाकोट ऐं पूंछ खे करणो आहे
1: सोलर ऐं बैटरी
2: आप सुन रहे थे जीए एफ एम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज

खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा ख़मीस जुमे छंछर आचर ऐं सूम

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301-2196-851।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वने थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003।

ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सां कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88

बच्चों बच्चों जाने थो तो ही नसल दर नसल धांधली जी पैदावार है। नवाज शरीफ पेरो भेरो वडो वजीर धांधली जरिए बनो। पेरो भेरो वजीर आजम भी असगर खान केस दे करे थियो। ट्यों भेरो वजीर आजम आरो इलेक्शन सबब बनो। अज भी खेन वजीर आजम ए वसीला जी कुर्सी फॉर्म 47 सबब भी मिली है। इन्हन के कश्मीर में धांधली करण डींदासी। बिलावल भुट्टो सरदारी जा मुजफ्फराबाद में नवाज लीग ते वार। चूंड जलसे के खिताब कंदे बिलावल भुट्टो सरदारी चयो ही मुजफ्फराबाद है श्रीनगर न अवां के धांधली करण न डींदासी। ही चवन था त कश्मीर के पंजाब बनाए छींदी। तानो दियन था त कश्मीर के सिंध बनाए छो। पर मां कश्मीर के कश्मीरी दिसन चाहियां तो। कश्मीर जो फैसलो इस्लामाबाद पंजाब सिंध खैरपुर पख्तूनख्वा या बलोचिस्तान न पर कश्मीरी पाण ही कंदा। कश्मीर जो फैसलो मुजफ्फराबाद मीरपुर रावलाकोट ए पूंछ के करणो है। धांधलियन की माहिर पीपल्स पार्टी धांधलियन जो गालू कर रही है। बुधायो वने त क्यामत केड़े वक्त इंदी। वजीर अला पंजाब मरियम नवाजी पीपल्स पार्टी ते टोक।

ही तव्हां न पर फार्म 47 जो नशो ॻाल्हाए रहियो आहे। क़यामत 2024 में आई हुई जॾहिं अव्हां खे ख़ैराती मैंडेट ॾिनो वियो हो। सिंध जे सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमण जो मरियम नवाज़ खे जवाब। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे शर्जील इनाम मेमण चयो आहे त नवाज़ शरीफ़ जीअं मरियम नवाज़ बि चोर दरवाज़े खां इक़्तदार में आई आहे। मरियम नवाज़ अली मैंडेट ज़रिए सीटूं हासिल करे वज़ीर अलॻि थी आहे। नून लीग आज़ाद कश्मीर में बि धांधली ज़रिए इक़्तदार मारणु चाहे थी पर

0: अमरीकी सरकार हिकु भेरो ॿीहर ईरान ते वॾनि हमलनि जो ऐलान करे छॾियो। डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त उर्दन में अमरीकी फ़ौजी अॾे ते हमले जे जवाब में ईरान ते शदीद हमिलो कयो वेंदो। अमरीकी फ़ौज वटि ओचितो हमले जो जवाब ॾियण लाइ रुगो कुझु मिंटनि जो वक़्तु हो। ईरान जो अहिड़ो हशर कयो वेंदो जो यादि रखंदो। परॾेह ख़बर इदारे फॉक्स न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे डोनाल्ड ट्रंप चयो त ईरान जे हामी विड़ाकनि ख़िलाफ़ बि कार्रवाईनि जो जाइज़ो वरितो पियो वञे। इराक में ईरानी फॉक्सेस दुनिया लाइ नासूर बणियल आहे। उन्हनि ख़िलाफ़ वधीक हमलनि ते बि गौर कयो पियो वञे। विचोभर में नई जंग शुरू थी वई। ऑयल रिफाइनरीज ते हमलनि बाद सऊदी अरब जी अमरीका सां गॾु इराक में कार्रवाई। ईरान जे हामी ग्रुपनि जे थाकनि खे निशानो बणायो। सऊदी अरब जे दिफ़ा वारी वज़ारत चयो आहे त ऑयल रिफाइनरीज ते हमिलो कंदड़ ग्रुप्स खे निशानो बणायो आहे। मुल्की सलामती ऐं ख़ुदमुख़्तारी ते को बि ठाह न थींदो। अमरीकी फ़ौज पारां बि इराकी ग्रुप्स ख़िलाफ़ कार्रवाई जी तस्दीक कई वई। इराकी विड़ाक ग्रुप हमलनि में 20 ॼणनि जे मारजण जी तस्दीक करे छॾी। ईरान जा उर्दन में अमरीकी अॾनि ते मिज़ाइल हमला। उर्दन पारां 5 ईरानी मिज़ाइल नाकारा बणाइण जी दावा। अमरीकी फ़ौज पारां उर्दन में ईरानी हमलनि जी तस्दीक। अमरीकी फ़ौज ईरानी हमलनि जी तस्दीक कंदे चयो आहे त ईरान तर्फ़ां फायर कयल समूरा मिज़ाइल दिफ़ाई निज़ाम रोकिया आहिनि। ईरानी पासा इनकलाब चयो आहे त उर्दन में अमरीकी फ़ौजी अॾे ऐं सेंटकाम जे मर्कज़ खे बैलिस्टिक मिज़ाइल सां निशानो बणायो आहे। उर्दन चयो आहे त ईरान पारां फायर कयल 5 मिज़ाइल नाकारा बणाया विया। ईरान आपनाए हुर्मुस जे इंतज़ाम बाबति इलाक़ाई निज़ाम जोड़ण वारी तजवीज़ रद्द करे छॾी। आपनाए हुर्मुस में 3 धुर जी शमूलियत क़बूलण खां इनकार। ईरानी नायब परॾेही वज़ीर कासिम ग़रीब आबादी चयो आहे त ओमान जे आपनाए हुर्मुस खे ॿिनि मुल्कनि में हिकु जेतिरो विरिहाइण वारी तजवीज़ रद्द कई आहे। ईरान जी हदनि सामूंडी रस्तनि जी ज़िमेवारी तेहरान ऐं ओमान पंहिंजी सामूंडी हदनि जी ज़िमेवारी संभाले सघे थो। ओमान ईरान जो आपनाए हुर्मुस बाबति मनसूबो रद्द कयो त हुर्मुस बंदि ई रहंदो। خیبر پختونخوا ऐं बलूचिस्तान जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में सिक्योरिटी फोर्सेस जी कार्रवाई। 32 दहशतगर्द मारिजी विया। ISPR मूजिबि خیبر پختونخوا जे ज़िले خیبر में ऑपरेशन दौरान 24 दहशतगर्द मारिया विया। बलूचिस्तान जे इलाइक़े नौशकी में ऑपरेशन दौरान 8 दहशतगर्दनि खे जनम भेड़ो कयो वियो। मारिजी वियल दहशतगर्दनि वटां हथियार ऐं बारूदी मवाद हथु कयो वियो। सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ, घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी ऐं ॿियनि पारां दहशतगर्दनि ख़िलाफ़ कामयाब कार्रवाई ते फोर्सेस खे भेटा। आज़ाद कश्मीर जे शहर रावला कोट में पाबंदी बणियल तंज़ीम फोर्सेस ऐं पुलिस ते हमला कया। शहरियुनि जी मिल्कियतनि खे बि नुक़सान पहुचायो। कंहिं बि जथे खे फोर्सेस ऐं पुलिस ते हमलनि जी इजाज़त नथी ॾेई सघिजे। आज़ाद कश्मीर जी पुलिस अजमान चयो आहे त हीउ पुरमन तहरीक न पर हथियार बंद जो जथो बणिजी चुकी आहे। पुलिस ऐं फोर्सेस ते हमला करे रहिया आहिनि। जथनि जी फायरिंग में रेंजर्स अहलकार शहीद ऐं 15 पुलिस अहलकार ज़ख़्मी थिया आहिनि। पुलिस ऐं कानून लागू कंदड़ इदारनि शर पसंदनि खे गिरफ़्तार कयो आहे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एतमाद, बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा

0: अस्सलाम वालेकुम अदा।
1: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
0: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
1: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
0: न अदा?
2: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
0: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
1: हाँ दा, कारोबारी इश्तेहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
0: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
2: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नर्थ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
1: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
3: 03013992836
2: आई मोहम्मद उमेर गोरी 03119155724।
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।
5: It's 9:15 p.m. This time check is brought to you by
6: White-ish Beauty Cream Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 03003385569।
4: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GA FM 94।

खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिज़िशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं सूमर ते सुबुह 10 खां शाम 5 वॻे ताईं मरीज़।

0: पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320-180-0003।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीट्स और जदीद माइक्रो बीट्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा?
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोछन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हरंदी?
2: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हले।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347।
4: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: Tesla, Puig, o Rabla, o el que diga.
1: बच्चो बच्चो ॼाणे थो त ही नसल त नसल धांधली जी पैदावार आहे। नवाज़ शरीफ पहिरियों भेरो वॾो वज़ीर धांधली ज़रिए बणियो। पहिरियों भेरो वज़ीर आज़म बि असर ख़ान केस जे करे थियो। टियों भेरो वज़ीर आज़म आर ओ इलेक्शन सबबु बणियो। अॼु बि कंहिं वज़ीर आज़म ऐं वज़ीर आला जी कुर्सी फॉर्म 47 सबबु ई मिली आहे। हुननि खे कश्मीर में धांधली करण न ॾींदासीं। बिलावल भुट्टो सरदारी जा मुज़फ़राबाद में नवाज़ लीग तेवार। चूंड जलसे खे ख़िताब कंदे बिलावल भुट्टो सरदारी चयो त हीउ मुज़फ़राबाद आहे, श्रीनगर न। अव्हांखे धांधली करण न ॾींदासीं। हीउ चवनि था त कश्मीर खे पंजाब बणाए छॾींदासीं। तानो ॾियनि था त कश्मीर खे सिंध बणाए छॾियो, पर मां कश्मीर खे कश्मीर ई ॾिसणु चाहियां थो। कश्मीर जो फ़ैसिलो इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, ख़ैबर पख़्तूनख़्वा या बलोचिस्तान न, पर कश्मीरी पाण ई कंदा। कश्मीर जो फ़ैसिलो मुज़फ़राबाद, मीरपुर, रावलाकोट ऐं पूंछ खे करणो आहे। धांधलियुनि जी माहिर पीपल्स पार्टी धांधलियुनि जूं ॻाल्हियूं करे रही आहे। ॿुधायो वञे त क़यामत कहिड़े वक़्तु ईंदी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ जी पीपल्स पार्टी ते टोक। ही तव्हां न पर फॉर्म 47 जो नशो ॻाल्हाए रहियो आहे। क़यामत 2024 में आई हुई, जॾहिं अव्हांखे ख़ैराती मैंडेट ॾिनो वियो हो। सिंध जे सीनियर वज़ीर शर्जील राम मेमण जो मरियम नवाज़ खे जवाब। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे शर्जील राम मेमण चयो आहे त नवाज़ शरीफ जीअं मरियम नवाज़ बि चोर दरवाज़े खां इक़्तदार में आई आहे। मरियम नवाज़ 40 मैंडेट ज़रिए सीटूं हासिल करे वज़ीर आला थी आहे। नून लीग आज़ाद कश्मीर में बि धांधली ज़रिए इक़्तदार माणणु चाहे थी, पर असां ईअं थियण न ॾींदासीं। अॻोणे वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ चयो त चूंडनि में धांधलियुनि जो सिलसिलो हाणे बंदि थियणु घुरिजे। जायज़ शिकायतूं हल थियणु घुरिजनि। असांजो मज़ाक उॾायो वेंदो त नतीजा बि निकिरंदा। इस्लामाबाद जे दौरे ते आयल कुवैती परडे॒ही वज़ीर शेख जराब जाबर अल अहमद अल सबा जूं वज़ीर आज़म ऐं फील्ड मार्शल सां धारदार मुलाक़ातूं। गॾियल दिलचस्पी जे मामलनि, इलाक़ाई सलामती ऐं बितरफ़ी सहकार ते ख़्यालनि जी ॾे वठि। मुलाक़ातनि दौरान बितरफ़ो सहकार वधीक मज़बूत बणाइण जे अज़म जो वर्ज़ाउ। कुवैती परडे॒ही वज़ीर इलाक़ाई अमन लाइ पाकिस्तान जे तामीरी किरदार खे साराहियो। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ कुवैत जे अमीर ऐं वली अहद लाइ नेक ख़्वाहिशनि जो इज़हार कंदे चयो आहे त ॿिन्ही ॿाहिर मुल्कनि हर ॾुखे तोड़े ख़ुशीअ जे मौक़े ते हिकु ॿिए जो साथ ॾिनो आहे। पाकिस्तान ख़ते में अमन लाइ दयानतदार ऐं मुख़लिस त्याकर तौर किरदारु अदा करे रहियो आहे। फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर जो चवणु आहे त पाकिस्तान कुवैत सां पंहिंजे